चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुख और दुख पर महात्मा बुद्ध के विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे भाग 64 बालकांड।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। आज आपने सुना बालकांड भाग 64। अब समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता

टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय

0: के प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता आपसी सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग

0: और जापान के विदेश मंत्री तोशे मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स

0: त्विशा शर्मा मामले में लिखा है पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विशा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments including ministries of railways, home affairs, health and family welfare and department of higher education among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%.

0: For financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled "She Put In Meat, A New Axis in the Making," the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरों में तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और IPL क्रिकेट में मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकर्रशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रोजगार मेला वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकर्रनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकर्री पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व ख़ानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपये की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो RBI की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला RBI के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। RBI ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60% का इजाफा हुआ है। امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو واشنگٹن اور نئی دلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر

0: के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफ़र करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज़, तजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफ्द को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क़याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावक़ार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फ़िलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में ख़वातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फ़ौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फ़ौजी हैं जिन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कॉन्गो में अक़वामे मुत्तहदा के इस्तेहकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुँचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अवी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
0: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज़ में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की ख़रीदारी अपनी असल ज़रूरत

0: کی 26 سیٹوں پر انتخابات 18 جون کو ہوں گے. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. اس بات کا اعلان انتخابی کمیشن نے کل کیا.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج مختلف سرکاری محکموں میں نئے بھرتی کیے گئے افراد کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے. آر بی آئی نے مالی سال 2025-26 کے لیے 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی ریکارڈ اضافی رقم مرکزی حکومت کو سونپنے کی اجازت دی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے اپنے پہلے 4 روزہ دورے پر کولکاتہ پہنچ گئے ہیں. وہ آج دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی فوج کے افسر میجر ابھیلاشا براک کو سال 2025 کا اقوام متحدہ کی فوجی صنفی وکیل کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
2: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब समय है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का.
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. स्वीकार करें अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार. श्रोताओं, आईबीटी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आंतों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है. इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल 19 मई को वर्ल्ड आईबीटी डे मनाया जाता है. अधिक जानकारी हमने प्राप्त की गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल दास से.
4: आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है. तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर दो तरीके के आंत होती है, एक स्मॉल बाउल होती है, एक लार्ज बाउल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं. जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं. कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बाउल की होती है जो कि 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन की होती है, उसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं. 2 से 3 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है. तो ये सिम्टम जब 2 से 3 हफ्ते तक एक्सटेंड करती है, तब हमें शक होता है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है. फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं. बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं, और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है.
5: दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ. आजकल के मौसम में आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है और काफ़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी कई जगहों पे आ रही है. ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना बचाव खुद करें, क्योंकि देखा गया है कि अगर लू लग जाती है किसी को और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो ऐसे में इसकी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी इनफैक्ट 50-70% डेथ रेट इसमें होता है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद अपना बचाव करना है कि 12 से 4 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी धूप पड़ती है, या तो ऐसे समय में नहीं निकलें या अपना जो भी काम है उससे पहले कर लें, बाद में कर लें, और अगर निकलना भी है तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप निकलें. जैसे कि एग्जाम्पल, आप कैप लेके निकल सकते हैं, छतरी लेके निकल सकते हैं, पानी तरल पदार्थ आप जरूर रखें बॉटल में, चाहे वो ठंडाई हो, ORS हो, या फिर आपने नींबू पानी का घोल बना लिया हो, या इस तरह की कोई भी जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको आप लेके चलेंगे और बीच बीच में सेवन करते रहें उसको, ताकि आपको ये जो लू लगने की समस्या ना आए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कपड़े जो पहनते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऐसे में जो बिल्कुल टाइट फिटिंग सिंथेटिक ड्रेस जो होते हैं वो ना पहने, और कॉटन वाले जो हल्के रंग के, जो वाइट या उसके हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, ताकि जो इवेपोरेशन है, जो बॉडी को कूलिंग होती है या बॉडी

0: जो हवा लगनी है वो भी लगते रहे। सिंथेटिक कपड़ों में हवा बॉडी को नहीं लगती है और इवेपोरेशन भी नहीं होता है, ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं लू लगने के। इसके साथ साथ अगर कोई समस्या आती है, आपको हीट क्रैम्स आते हैं या मूर्छित वाली ऐसी स्थिति या वॉमिटिंग, नोजिया या उल्टियां आने ना, दस्त आ जाना, तो इससे डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। या फिर लक्षण भी अगर जैसे मान लो गफलियत में कोई जा रहा है या फिर दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल में जाना अनिवार्य हो जाता है ताकि इसका सही उपचार या आईवी फ्लूइड्स जिसको कहते हैं वो दिया जा सके। तो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचना भी एक उपचार ही है, और क्योंकि ऐसी भयानक बीमारी से बचाव सिर्फ जानकारी से और समय पे सही निर्णय लिया जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।
1: सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक स्थिति है जो लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें दी मनोविशेषज्ञ योगेश कुमार ने।
2: एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है। वो उन सब बातों पे ज्यादा विश्वास करता है जो बिल्कुल सच नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, और उनको जितना ही समझाने की कोशिश करो उनका ये फर्म बिलीफ रहता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। वो दूसरे की जो बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, और इसमें कई प्रकार के उसे भ्रम रहते हैं जिसे डिल्यूजन्स कहते हैं, और डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी रहते हैं। डिल्यूजन्स ये रहता है कि कहीं कोई उसको प्लॉट तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कभी उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तरह तरह की कमांड सुनाई देने लगते हैं, और उनका जो व्यवहार है और जो एक्शंस है वो जो आवाज़ें सुनते हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हैं। उनके सोचने, समझने के, व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो ऑब्सेशंस होता है इन सब बिलीव्स का, थॉट्स का, वो 24 घंटे ही रहता है। पर कभी ये थॉट्स और जो बिलीव बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे थोड़ा नॉर्मल्स हो जाते हैं। जितनी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं हम इनको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होते हैं इनका कोई ऑर्गेनिक रिलेशंस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक डिसीज जो है इसके पीछे नहीं होती है। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशंस और स्ट्रेस से भी ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकते हैं। okay. और न्यूरोसिस डिसऑर्डर थोड़े माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो बड़े प्रोफाउंड होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं, और इनका इसमें व्यक्ति का रियलिटी से बिल्कुल टच चला जाता है। अब जैसे सिज़ोफ्रेनिया है, साइकोटिक की कंडीशन उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर है, साइकोटिक की कैटेगरी में आता है। और पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशंस है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं।
1: असुरक्षित प्रसव या प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण बहुत सी समस्याएं महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। इन्हीं में से एक है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। इस समस्या की रोकथाम और इसके इलाज के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में हर साल 23 मई को ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला, कारण, लक्षण और उपचार, सुनिए ये भेंटवार्ता। विशेषज्ञ है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर निखिल गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं परविंदर कौर।
3: सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे कि ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला होता क्या है।
4: देखिए, जैसा कि नाम से ही हम अगर समझने की कोशिश करें, ऑब्स्टेट्रिक और फिस्टुला, फिस्टुला से हमारा मतलब होता है जब दो रास्तों के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाए, उसे हम फिस्टुला कहते हैं। और ऑब्स्टेट्रिक मतलब ऑब्वियसली जिसका लिंक, जिसका रिश्ता डिलीवरी से या पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से हो। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला समझने के लिए अगर हम महिलाओं की एनाटॉमी, उनके शरीर की संरचना को समझें अगर, तो जो उनकी बच्चेदानी का रास्ता है वो पेशाब के रास्ते और जो हमारा स्टूल है या लैट्रिन के रास्ते के बीच में स्थित होता है। और अगर प्रेगनेंसी के समय किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, जिसे स्पेशली हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं,

0: तो उसमें बच्चेदानी से या जो रास्ता निकलता है वहां से एक कम्युनिकेशन बन जाता है, या तो आगे की तरफ यानी कि या तो पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें, या यूरिथ्रा में, और इन दोनों फिस्टुलास को फिर हम वेजाइको वेजाइनल या यूरिथ्रो वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं, या फिर ये कम्युनिकेशन ये एबनॉर्मल फिस्टुला पीछे की तरफ बन सकता है यानी कि लैट्रिन के रास्ते में, जिसको हम रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं,
1: जी,
0: और ये तीनों तरह के फिस्टुला ही ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंदर माने जाते हैं।
1: तो सर क्या ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज में जिनको लेबर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या तो फिर ये प्रॉब्लम अनकॉमन है?
0: देखिए अगर मैं बताऊं तो इस बीमारी के एक दूसरा नाम भी है, डिजीज ऑफ पॉवर्टी। जैसा इसके नाम से हम
1: जी
0: समझ सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में या जो प्रगतिशील उन्नत देश हैं उनमें बीमारी नहीं पाई जाती। अमेरिका यूरोप की बात करें वहाँ ये बीमारी ना के बराबर है। ये बीमारी सबसे अधिक एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है, और एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में करीब 20 लाख महिलाएं फिस्टुला से ग्रसित हैं, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला से, और हर साल इसमें करीब 75,000 से 1 लाख नए मरीज शामिल हो जाते हैं।
1: जी
0: इतनी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है, इस बात से हम ये समझ सकते
1: तो
0: हैं।
1: सर कैसे पहचान करे एक औरत कि उसको ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला हो गया है, और कब उसे डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए?
0: देखिए मुख्यतः जैसे मैंने बताया कि ये फिस्टुला डिलीवरी यानी कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद देखा जाता है, और मुख्यतः मरीज को जो शिकायत होती है वो उनको अपने वजाइना के थ्रू एबनॉर्मल या तो पेशाब का डिस्चार्ज या लैट्रिन का डिस्चार्ज देखा जाता है, जिस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। ये मुख्य एक कंप्लेंट होती है मरीजों की, या फिर वो बदबू की कंप्लेंट कर सकते हैं, या वहाँ पे बार बार उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तीन चार मुख्य कंप्लेंट होती हैं जो लेकर मरीज हमारे पास आते हैं।
1: सर एक और प्रश्न आ रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है या अन्य किसी कारण से भी हो सकती है?
0: नहीं, मुख्यतः मैं कहूँगा 99.9% ये बीमारी होती ही ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से है, यानी कि किसी वजह से अगर मरीज बहुत लंबे समय तक लेबर में है और उस दबाव की वजह से अगर नीचे के हिस्सों में ब्लड सप्लाई बहुत देर तक रुकी रहती है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम ही जो ऑब्स्ट्रक्टेड फिस्टुला या फिस्टुला बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। तो इसकी और कोई वजह नहीं है, ये 99.9% इसकी वजह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ही है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में देखा जाता है अगर नीचे से कोई अनट्रेन्ड दाई या कोई ऐसी महिला प्रसव करा रही है जिसको इसका तजुर्बा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और उसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट औजार या कोई दवाई लगाई है जिससे नीचे के रास्ते में चोट पहुंच जाए, वो अलग बात है। नहीं तो इस बीमारी की जो तीन मुख्य वजह अगर आप मुझसे पूछें तो एक वो है कि डिलीवरी या प्रेगनेंसी के समय महिला की कम उम्र का होना, जब नीचे के एनाटॉमी या नीचे के ऑर्गेन स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बने हैं, कच्चे हैं वो, उस समय उसकी संभावना बढ़ जाती है, या फिर चिकित्सा सुविधाएं अगर बहुत अच्छी उपलब्ध नहीं है ऐसे मरीजों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर लेबर बहुत लंबा खिंच रहा है और नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पा रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी अच्छी चिकित्सा फैसिलिटी में शिफ्ट करवा कर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवानी चाहिए। लेकिन अगर अस्पताल या चिकित्सालय घर के पास नहीं है, महिला किसी दूर दराज इलाके में रहती है जहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और महिला की उम्र भी कम है, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में फिस्टुला बनने की संभावना बढ़ जाती
1: सर, जैसा कि आपने बताया कि सिजेरियन सेक्शन करवा लेना चाहिए, आजकल बहुत कॉमन है, हर दूसरी महिला को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है, तो क्या बार बार सिजेरियन सेक्शन करवाने से इसके चांस बढ़ जाते हैं?
0: है। नहीं देखिए, सिजेरियन सेक्शन जैसा आपने पूछा, 2 या 3 बार करवाने से क्या फिस्टुला के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। सिजेरियन सेक्शन इनफैक्ट फिस्टुला रोकने के लिए ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का ट्रीटमेंट है सिजेरियन सेक्शन। बार बार सिजेरियन सेक्शन से ये जरूर है कि यूट्रस या बच्चेदानी कमजोर हो जाती है और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, अगली प्रेगनेंसी में यूट्रस के फटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते, लेकिन फिस्टुला होने के चांस नहीं बढ़ते।
1: तो सर एक बार जिस महिला को ये हो गया तो उसे क्या उपचार लेना चाहिए?
0: अगर ये फिस्टुला का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये दोबारा कभी नॉर्मल प्रेगनेंसी या डिलीवरी भी नहीं हो पाएगी ऐसी लेडीज में,
1: जी
0: यानी कि दोबारा कभी माँ भी नहीं बन पाती है। नीचे की हाइजीन इतनी खराब रहती है, बदबू इतनी आती रहती है, तो पूरे समाज से उनका बहिष्कार भी हो जाता है। अब रही बात इसके इलाज की, इलाज बहुत बातों पर निर्भर करता है, फिस्टुला कहाँ पर है, उसका कितना साइज है, ऑपरेशन के बाद कितना समय हुआ है, कितना जल्दी हमने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अगर बहुत जल्दी हमने लेबर के बहुत जल्दी हमने इसको अगर डायग्नोज कर लिया है और फिस्टुला का साइज छोटा है, तो हम पेशाब की थैली में अगर इसका कनेक्शन आगे की तरफ से है, पेशाब के रास्ते से है, ब्लैडर से या यूरेथ्रा से जैसा मैंने बताया था। तो एक प्लेन जो कैथेटर, जिसको हम फोलिस कैथेटर बोलते हैं, जो पेशाब की थैली में पाइप डाल के रखते हैं, उसको अगर हम लंबे समय 6 से 8 हफ्ते 2-3 महीने तक रखें

0: तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि छोटा फिस्टुला सिर्फ उससे ही ठीक हो जाते हैं बिना ऑपरेशन। लेकिन अगर फिस्टुला का साइज बड़ा है और फोलिस के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो इस तरह के फिस्टुलास के लिए फिर ऑपरेशन किया जाता है। ये दोनों रास्ते जो आपस में जुड़ गए हैं, वेजाइना और पेशाब का रास्ता, उनको ऑपरेशन करके अलग किया जाता है जिससे कि पेशाब की या लैट्रिन की लीकेज वेजाइना के थ्रू ना हो।
1: तो इसे क्या मेडिसिन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है कि सिर्फ फोलिस कैथेटर या सर्जरी के द्वारा ही ठीक होता है?
0: नहीं, देखिए मेडिसिन जो है वो इसलिए दी जाती है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो वहाँ पे, साफ सफाई रहे, लेकिन इसका इलाज फोलिस कैथेटर या फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर सर्जिकली ही इसको करेक्ट किया जाता है।
1: तो किसी महिला को जब सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है, सर्जरी करवाने ही पड़ती है, तो सर्जरी करवाने के बाद उसे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए?
0: देखिए इसकी सर्जरी भी मैं कहूँगा आसान सर्जरी नहीं है, और जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं इस फील्ड में जिन्हें फिस्टुला ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग ली हुई है उन्हीं को इस तरह की सर्जरी अटेम्प्ट करनी चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बार बार होने के भी चांसेस रहते हैं, एक और सर्जरी के फेल होने की भी संभावना रहती है अगर एक अनट्रेंड आदमी इस चीज़ की सर्जरी करता है तो, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पोस्ट ऑप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
1: जी।
0: तो ज़रूर पोस्ट ऑप पीरियड में या ऑपरेशन के बाद के समय में डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, दर्द की, सूजन की दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो लेनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और फोलिस कैथेटर जिसकी बात मैंने शुरू में की थी वो ऑपरेशन के बाद भी मरीज को 1.5 से 2 महीने रखना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस समय मरीज को पेशाब के लिए जोर ना लगाना पड़े और पेशाब आराम से थैली में आता रहे।
1: सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर्जरी होने के बाद ऐसे पेशेंट्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं?
0: देखिए मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के मरीज जो महिलाएं जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला से ग्रसित हैं उनका सामाजिक जीवन बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे मरीजों को मेरी दोबारा आपके प्रोग्राम के थ्रू सलाह है कि बिना देर किए जिस भी क्षण उनको ये लगे कि उनके वजाइना से किसी भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे वो यूरिन का या स्टूल का अगर है, खासतौर पर डिलीवरी के बाद, तो बिना देरी किए उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, समय पे इसका इलाज करा लेना चाहिए। अगर समय पे इसका इलाज हो जाए पूरी तरीके से तो ये महिलाएं अपना बाकी जीवन बिल्कुल ठीक ठाक बिता सकती हैं और आगे की जिंदगी में इन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
1: सर, एक और सवाल आ रहा है मन में कि अगर इस डिजीज को हम अनट्रीटेड छोड़ दें, इसका इलाज ना करवाया जाए, तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि क्योंकि एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, एक रास्ता बना हुआ है वजाइना में और या तो पेशाब के रास्ते के साथ या लैट्रिन के रास्ते के साथ, तो अक्सर पेशाब और लैट्रिन वजाइना के थ्रू निकलती रहती है जिसपे मरीज का कंट्रोल नहीं है, कपड़े खराब होते रहते हैं और अक्सर ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते का, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जो किडनी तक पहुंच सकता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और अक्सर अगर ये इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है।
1: अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे कि वो खुद को इस बीमारी से बचा सकें?
0: देखिए सबसे पहले जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में 3 बातें बताई थी इस बीमारी की मुख्य वजह, कम उम्र में मां बनना, तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा और भारत सरकार भी सबको सलाह देती है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल है, अगर हम अपने घर की लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देती हैं और वो कम उम्र में मां बन जाती हैं तो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़कियों की शादी कम उम्र में ना करें, पहली बात। दूसरी बात, सभी महिलाओं को ये मेरी सलाह है कि प्रेगनेंसी में वो अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप के लिए जाएं, उनके पास घर के आसपास जो भी अस्पताल, सरकारी, प्राइवेट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, आंगनवाड़ी वर्कर, किसी की भी सलाह लें और अपनी प्रेगनेंसी उनकी देखरेख में करें, और जैसी वो सलाह दें कोशिश करें अगर डिलीवरी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो सके, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमेशा बेटर रहती है बजाय कि होम डिलीवरी के। और अगर ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह की इस तरह की समस्या जैसे मैंने बताया, एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज, चाहे वो पेशाब का या लैट्रिन का, उनको अपनी वजाइना से दिखाई देता है तो बिना देर किए नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर RML हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर निखिल गुप्ता से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
4: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
5: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
4: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो।

0: 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क यातायात चोटें दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। सड़क सुरक्षा और क्षति प्रबंध, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर पी के सचदेवा। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
2: आज की इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में दुर्घटनाएं जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर रह गई है। दुर्घटनाएं चाहे बस से हो, कार से हो, साइकिल से हो, ट्रक से हो, ट्रेन से हो, हवाई जहाज से हो, कई स्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं के रोगियों को यदि समय पर उचित प्राथमिक सहायता मिल जाए तो करीब 25% जानें बचाई जा सकती हैं और उनके घर की खुशहाली बरकरार रखी जा सकती है। क्यों होती हैं दुर्घटनाएं? क्या लोगों में पेशेंस, धैर्य की कमी है? हर एक को जल्दी है, कानून का पालन ना करना, रोड सेफ्टी के रूल्स को ना फॉलो करना, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट का प्रयोग ना करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बैड आईसाइट होना, शायद ये भी कुछ वजह हैं। WHO की एक स्टडी के अनुसार हर 3 में से एक व्यक्ति की डेथ जो सड़क दुर्घटना में होती है वह ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। ट्रॉमा व रोड सेफ्टी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पी के सचदेवा। डॉक्टर सचदेवा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है, चेयरमैन है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, और आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है कि दुर्घटनाएं जो हैं आज के परिपेक्ष में क्यों बढ़ती जा रही हैं और कौन कौन सी दुर्घटनाएं ज्यादा देखने में आती हैं?
3: लोगों के अंदर पेशेंस की डेफिनेटली बहुत कमी है। ट्रैफिक के रूल्स लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं। अगर हम लोग लेन ड्राइविंग भी करनी शुरू कर दें तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट बहुत कम हो सकते हैं। देखो, व्हीकल मेनली जो यूज़ होते हैं रोड्स के ऊपर दो तरह के होते हैं, या तो 2-व्हीलर यूज़ होते हैं या 4-व्हीलर यूज़ होते हैं। अब 2-व्हीलर वाले कितने आम लोग ये देखते हैं कि बिना हेलमेट के ही चल पड़ते हैं, तो हर इवन पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहन के चलना चाहिए। अगर हम लोग हेलमेट पहनना शुरू कर सकते हैं कम से कम 70% दुर्घटनाएँ उससे कम की जा सकती हैं। सेकेंड थिंग इज स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। हर सड़क के ऊपर एक एक इंडिकेटर लगा होता है कि आप इस स्पीड को बियॉन्ड नहीं जाएंगे
2: जी।
3: उसमें यह कि गवर्नमेंट ने देखो जितने पब्लिक व्हीकल्स हैं, पब्लिक व्हीकल्स के अंदर तो उन्होंने पहले से ही लिमिट लगा दी है कि आपका एक्सीलेटर उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। पर बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ओवरटेकिंग के अंदर ही कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट इज ए वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ डेथ इन आवर सिटी। जितने भी फास्ट मूविंग व्हीकल हैं इनके जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट से अगर सर में चोट लगती है, सर की चोट लगने की वजह से डेथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड अगर पेशेंट बच भी जाता है, अगर उसके ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी ही पॉसिबल नहीं हो पाती है, पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्सीडेंटल पेशेंट्स।
2: आप क्या समझते हैं, सीट बेल्ट ना पहनना, शराब पी के गाड़ी चलना, क्या ये कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं एक्सीडेंट में या सिर्फ कहने की बात है?
3: हालांकि सरकार ने एक परमिसिबल लिमिट रखी हुई है, पर मेरे आइडिया से आपको शराब पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कंट्रोल खो देने की वजह से गाड़ी इधर उधर जा सकती है, गाड़ी इम्पैक्ट कर सकती है, दूसरी गाड़ी के साथ इम्पैक्ट कर सकती है, दूसरा अगर सर में चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी चली जाती है। और डेफिनेटली जब से हमारी कंट्री के अंदर ये रूल बना है कि बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी नहीं चला सकते, एक्सीडेंट सीट बेल्ट एक्सीडेंट को तो नहीं प्रिवेंट कर सकती, पर यस द पेशेंट को जरूर प्रिवेंट कर सकती है। उससे सिवेरिटी ऑफ इंजरी जो है वो बहुत कम हो जाती है। पर मगर अगर आप एज ए सिटीजन अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई हुई है, 102 डायल कीजिए तो आपको ट्रॉमा एम्बुलेंस उसी समय आ जाती है। दैट डजंट टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, और ट्रॉमा एम्बुलेंस वाले जो है ड्राइवर और साथ में जो कंडक्टर हैं, दे आर ट्रेन्ड पीपल, दे कैन हैंडल द ट्रॉमा केसेस।
2: डॉक्टर साहब, कैसे पता लगे कि जो इंजरी हुई है वो एक साइड में बेहोश है? अगर बेहोश है तो क्या उसका होना चाहिए? अगर वो बेहोश नहीं है तो क्या उसको पानी पिलाना चाहिए? कुछ लोग उसे मुंह में पानी डाल देते हैं, कुछ लोग उसको जूता सुंघा देते, शायद ऐसे ही हो गया होगा और सर पे चोट लगी हुई है, स्पाइन में चोट लगी, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करें उस वक्त इमीडिएटली?
3: देखो, जब भी किसी को एक्सीडेंट के विक्टिम को चोट लगती है तो दो तरह की चोट जो है मेन थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। एक तो सर की चोट जिसको हेड इंजरी कहते हैं और ब्रेन इंजरी कहते हैं, और दूसरी जो ट्रॉमेटाइज सबसे ज़्यादा चोट होती है वो थी स्पाइन की इंजरी। अगर बेहोश पेशेंट होता है तो बेहोश पेशेंट के अंदर ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वो खाली सर की चोट की वजह से बेहोश है या उसको साथ में स्पाइन इंजरी भी है। तो सीधा सा एक मेथड है कि जब भी आप इस तरह के पेशेंट को डील कर रहे हैं, पेशेंट को एक तो स्ट्रेट रखिए, और अगर उसको उल्टी वगैरह आ रही है तो उसको लेटरल पोजिशन में लिटा दीजिए और पूरी बॉडी को रोटेट कीजिए। ये नहीं है कि खाली गर्दन को आपने रोटेट कर दिया। अगर उसको सर्वाइकल कॉर्ड में इंजरी है तो पेशेंट कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा। अगर आप उसको एज ए पूरी बॉडी को रोटेट करते हैं तो देर आर चांसेस स्पाइनल कॉर्ड विल बी प्रिजर्व्ड एंड देन यू कैन शिफ्ट द पेशेंट। और जनरल पब्लिक को भी ये कोई पानी नहीं पिलाना चाहिए कभी, ये जूता सूंघना वगैरह सब बेकार की बातें होती हैं।
2: डॉक्टर साहब, अनकॉन्शियस पेशेंट बेहोश है, उसका क्या करें?
3: सारे अस्पतालों के अंदर ये फैसिलिटी होती है, कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है उसको अननोन पेशेंट करके एडमिट किया जाता है। ये है कि जो हम देखने वाले होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनकी एक ही ड्यूटी है, अगर वो उस पेशेंट को किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं लेके जा सकते हैं तो या तो 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और 102 नंबर पे एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए। तो आजकल पुलिस को भी बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है तो आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा सकते हैं। एक बारी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो बाकी कागजी कार्रवाई होती रहती है, बट ये है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट इमीडिएटली ऑन रीचिंग दी एमरजेंसी शुरू हो जाता है। अब जैसे सिर की चोट लगी है, सिर की चोट के अंदर एक्सटेंट ऑफ इंजरी देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग किस एक्सटेंट तक है। या तो ये ट्रीटमेंट दवाइयों से किया जाएगा या सर्जरी से किया जाएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल इन दिल्ली सीटी स्कैन की मशीन जो है कैजुअल्टी के पास में ही होती है। जैसे ही पेशेंट पहुंचता है उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट शुरू करके आईवी फ्लूइड लगा के कुछ दवाइयाँ उसको आईवी दे के इमीडिएटली सीटी स्कैन करा लिया जाता है। एंड पूरी एक ट्रॉमा टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो उस ट्रॉमा टीम को अलर्ट कर दिया जाता है। उसके अलर्ट करने के बाद सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज का इलाज ऑपरेशन से होना है या दवाइयों से होना है। अगेन आई विल से द प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन केसेस ऑफ हेड इंजरी।
2: तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं जो है, ट्रॉमा सेंटर्स की सुविधाएं दिल्ली में या आसपास के शहरों में एडिक्वेट उपलब्ध है, आप समझते हैं कि पर्याप्त मात्रा में है या लैक ऑफ फैसिलिटी वैसे लोगों की मृत्यु हो रही है?
3: लैक ऑफ फैसिलिटीज एक टाइम पे दिल्ली एनसीआर में होता था, पर दिल्ली एनसीआर के अंदर इस समय बहुत अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। हाँ, इफ यू गो इनटू द पेरिफेरी डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम इज देयर। उसमें यही होता है कि आप पेशेंट को किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे ले जाइए, वहां से एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेके द पेशेंट कैन बी शिफ्टेड टू अ बिग हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल।
2: डॉक्टर साहब, कुछ पेरेंट्स का रोल है, कुछ आप में समाज का भी रोल है?
3: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस मामले के अंदर। कोई भी इंसान को बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए गाड़ी अलाउ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास भी कुछ केस आते हैं जैसे बच्चे स्कूटियां चलाते हैं, पर मगर एज ए हम भी उनकी पेरेंट्स की क्लासेस लेते हैं। पेरेंट्स को हम यही कहते हैं कि किसी भी बच्चे को आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाने दीजिए, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। पेशेंट के कोर्ट केस बन जाते हैं, पेशेंट को बहुत भारी जुर्माना दे देना पड़ता है और लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ रिस्क तो होता ही हो। पेरेंट्स दे हैव अ वेरी बिग रोल इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन। दे मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन कि अगर गाड़ी चलाने का क्या तरीका होता है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ढंग से गाड़ी चलानी चाहिए।
2: डॉक्टर सचदेवा, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सड़क सुरक्षा और क्षति प्रबंध। अभी आप न्यूरोसर्जन डॉक्टर पी के सचदेवा से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं।

0: नोट कर लीजिए हमारी मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो हमें अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, 10:10 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं iprradiodelhi@gmail.com। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
3: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जीवों में विविधता। ये हमें भोजन, दवाइयाँ, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और जलवायु को संतुलित रखने जैसे अनगिनत संसाधन प्रदान करती हैं। भारत की भूमिका, भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संधि का हिस्सा होने के नाते भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान की रक्षा के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 भी लागू किया है। वर्तमान में दिल्ली सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी के बांदा में तो रिकॉर्ड पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक यही हाल रहने वाला है। ऐसे में चर्चा हो रही है नौ तपा गर्मी की। आखिर क्या है, कब कब होता है, इसके कारण क्या है और बचने के उपाय, सावधानियां क्या होंगी, इन सब पर जानने के लिए सुनते हैं प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव से कमल किशोर की ये बातचीत।
4: आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी को। आप क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं और आप लाइटनिंग मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात भी हैं और इस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता भी काफी हासिल है। आपने कई कार्य किए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार
4: कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, ये जो नौतपा है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है?
5: नौतपा, जैसे कि आपने बताया कि गर्मी के, भीषण गर्मी के नौ दिन, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब हमारा जो सूरज है वो नए नक्षत्र में प्रवेश करता है और इस वक्त सूरज सीधी रोशनी हमारी धरती पे देता है, तो जितने भी हमारे क्षेत्र जैसे भारत में, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, कर्क रेखा की बात करें, तो उसकी लाइन में जितने भी क्षेत्र आते हैं जो कि मुख्यतः मध्य भारत से गुजरता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, मिजोरम तक होते हुए,
4: यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत लगभग इसमें कवर होते हैं।
5: बिल्कुल, पूरे कवर होते हैं। और ये जो रेगिस्तान की ओर से गर्म हवा आती है ये आग में घी का काम करती है। तो एक तो सूरज की रोशनी और रेगिस्तान से चलने वाली गर्म हवा दोनों मिलाकर पूरे भारत को, खास करके मध्य भारत को, बहुत अच्छे से गर्मी से पाट देते हैं। और ये जब गर्मी बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, तापमान के साथ साथ आप देखेंगे वातावरण में नमी कम हो जाती है, सूखापन ज्यादा हो जाता है और इसके कारण हर जगह आप लो प्रेशर देखेंगे बिल्डअप होता है, जिसके कारण बवंडर, आंधियां चलती हैं। मई के महीने में आप देखेंगे हमारे राजस्थान से धूल भरी आंधी भी आती है। तो इन सबों का जो मिश्रित प्रभाव होता है वो हमारे पूरे सिस्टम पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे इकोनॉमी पे, हमारे शहरों पे, गांवों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4: प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, ये जो नौतपा होता है इससे तय कैसे किया जाता है, किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं?
5: नौतपा के सबसे पहला लक्षण है कि जब तापमान बढ़ जाए, जब तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए, तब हम लोग मानते हैं कि नौतपा शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान कहता है कि जब 5 डिग्री से ज्यादा डिपार्चर हो तो उसको हम एक्सट्रीम हीट मानते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे दिल्ली में 44 डिग्री चल रहा है, बांदा है जहां 47.8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा, चुरू, जैसलमेर, तो ये सारे इलाके हैं जो नौतपा से सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबों में जो तापमान का स्केल है वो 45 डिग्री के आसपास

0: आसपास चल रहा है, 45 से 48 डिग्री का तापमान होता है। और इसके साथ साथ दिन में गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम लू के नाम से भी जानते हैं। तो ये लू उसकी दूसरी पहचान है। तीसरी ये बात है कि हवा में नमी बिल्कुल कम हो जाती है और पानी की स्कार्सिटी हो जाती है। तो इस दौरान इंसान को, जानवर को, सभी को ये हिदायत दी जाती है कि जब पीक जो समर का पीरियड होता है, पीक टेम्परेचर का पीरियड है, 11 बजे से 4 बजे तक वो घर के अंदर रहें और अपने आप को तापमान से अधिक तापमान में एक्सपोज न करें और सुरक्षित रहें, छत के नीचे रहें, ठंडे स्थानों पर रहें।
1: अभी आपने ये बताया कि कहीं कहीं पर 43 डिग्री, कहीं कहीं 44, कहीं कहीं 45, 46 भी पहुंच जाता है। तो क्या ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है, तो उस अलग अलग जगहों पर भी नौतपा हम कह सकते हैं अलग अलग टाइम में?
0: लोकल सेंस में स्थानीय तौर पर आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं सूरज की जब गर्मी आती है, अगर वो सूरज की रोशनी घास पे या पानी पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वही अगर पथरीले कंक्रीट वाले स्थानों में पड़ती है उन जगहों पे ज्यादा हो जाती है। अब जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, मेट्रो सिटी की बात करूं, तो यहाँ पे पॉल्यूशन, गाड़ियों का चलना, कंक्रीट, ये सारे मिलकर इस तापमान को और बढ़ा देते हैं।
1: तो हम इसे भी नौतपा कह सकते हैं। तापमान जब भी बढ़ जाए तो हम इसे नौतपा कहते हैं।
0: बिल्कुल
1: संजय जी, नौतपा जो इतना होता है, इतना तीव्र होता है, इतना तीखा होता है, तेज होता है, तो इसके वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं?
0: देखिए, वैज्ञानिक कारण सबसे पहला, सूरज जो कर्क रेखा के ऊपर होता है तो सीधी सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा हमारे धरती पे पड़ती है। आज नौतपा के वक्त जो दिन का समय होता है वो लंबा समय होता है, 17-18 घंटे का दिन होता है। तो 17-18 घंटे डायरेक्ट जो सीधा एक्सपोजर होता है उसके कारण लगातार वो गर्म होता जाता है और इसी कारण तापमान का ज्यादा असर दिखता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो जाता है वो नमी की कमी, और ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों मिलाकर हम एक हीट इंडेक्स कहते हैं। आमतौर पे एक इंसान का शरीर 37 डिग्री हीट इंडेक्स को झेल सकता है, लेकिन हीट और मॉइस्चर मिलके ये कई बार 52-54 डिग्री का भी आपको असर दिखाते हैं। तो आप देखते होंगे कई लोग जो बाहर खड़े हैं वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनको लू लग जाती है, उल्टियां होती है, तो ये नौतपा का प्रभाव होता है। तो जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है, सबसे पहला सूरज का कर्क रेखा के सीधा ऊपर आना, और दूसरा आपके टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी का कम हो जाना।
1: तो क्या ये नौतपा 9 दिनों का ही होता है या इसकी समय सीमा कुछ बढ़ भी जाती है, जैसे कि हम नाम से नौतपा?
0: देखिए, नाम से हमारे यहाँ नौतपा कहा जाता है, आमतौर पे ये 9 दिनों की होती है, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं स्थिति चल रही है, तो 25 मई के पहले ही नौतपा ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि 9 दिन के लिए ही हो, ये 11 दिन 12 दिन भी हो सकते हैं। और इसका नापने का जो स्केल है वो तापमान है, जब तापमान 44 से 45 डिग्री के ऊपर चला जाए तब हम उसको नौतपा कहते हैं।
1: जी कर्नल साहब, ये ऐसा माना जाता है कि जितनी अधिक गर्मी होगी उतनी अच्छी बारिश होगी, क्या ये अनुमान सही है?
0: बिल्कुल, ये एक मौसम का चक्र है, और जितनी अधिक गर्मी होगी उतना लो प्रेशर का एरिया बनेगा और उतनी ही ज्यादा मॉइस्चर हवा में लोड होगी। इनफैक्ट हमारी एक रिसर्च के अनुसार 1 डिग्री जब तापमान बढ़ता है तो जो हमारा वातावरण है उसमें मॉइस्चर लोडिंग, जो नमी की लोडिंग की कैपेसिटी है, वो 7-12% बढ़ जाती। तो इसीलिए जितनी ज्यादा ये नौतपा में तापमान होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर बनेगा और उतनी अच्छी फिर बारिश होगी। ये लो प्रेशर के कारण जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वो ज्यादा तेजी से आकर्षित होंगी और मॉनसून निर्विरोध बिल्कुल बिना बाधा के पूरे क्षेत्रों में अच्छे से बारिश कर पाते हैं।
1: वैसे पशु पक्षी और इंसान पर तो असर होता ही है, कृषि पर भी, यानी कि पेड़ पौधों पर भी इसका क्या असर होता है?
0: देखिए, ये जो नौतपा है इस वक्त इंसान पशु के साथ साथ हमारे पौधों पे, हमारे जल जीवन पे इसका बहुत असर होता है। जहां तक प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर ये नौतपा प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबे समय तक चला जाता है, तो हमारी जो भी फसलें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जो हमारे पत्ते हैं वो गर्मी के कारण मुरझा जाते हैं,
1: झुलस जाते हैं,
0: और हमारी जो सब्जियां होती हैं, स्पेशली वेजिटेबल, और अभी फलों का मौसम है, खास करके आम, लीची, ये सब लगे होते हैं, तो इनपे जब ज्यादा तापमान होता है तो इनके झुलसने का खतरा होता है।
1: यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं, लगभग ऊपर ही रहती हैं, तो उनमें जो झुलसने का जो खतरा है वो बढ़ा रहता है और इसमें उनका असर ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके पत्ते भी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े कमजोर होते हैं और उनमें तुरंत गर्मी या तुरंत सर्दी का असर होता है, इसीलिए उन पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ है, जैसे आप पीपल का पेड़ देख ले, उसके पत्ते मोटे होते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर काफी अच्छा होता है, तो उसपे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी नौतपा हो तो ऐसे पेड़ों के, छायादार पेड़ों के नीचे जाओ जिसके पेड़ के पत्ते हो, घने हो, और वो आपको उस पत्तों में जो मॉइस्चर है उसके माध्यम से, जो हवाओं के माध्यम से आपको ठंडी ठंडी हवाएं दे, ठंडक दे, जिससे कि आप पे प्रतिकूल असर ना पड़े।
1: जैसे आपने कहा पीपल के पत्ते, उसी प्रकार से बरगद के पेड़ है और उसी प्रकार से नीम के पेड़ है। नीम के पेड़ के पत्ते छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घने होते हैं और उसके छांव में बड़ा सुकून सा होता है।

0: इनफैक्ट अगर आप नीम के पत्तों की बात करें तो उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है उसके अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य को काफी फायदा होता है। उस इलाके में जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया है उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे हमारे गाँव में काफी संख्या में घरों के सामने जहाँ आबादी रहती है नीम के पत्ते लगाए जाते हैं, तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी हमारी वनस्पति संपदा है उसको गाँव में जंगलों में काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है।
1: इस मौसम में पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी सबके लिए बड़ी नुकसानदायक होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे लिए जो नुकसानदायक हैं, क्या उनके नष्ट होने की संभावना बनी रहती है इस नौतपा के मौसम में?
0: जो कीड़े मकोड़े वायरस होते हैं, आपने देखा होगा कोविड से हम लोग गुजरे हैं कुछ साल पहले
1: जी,
0: और जहाँ ज्यादा ठंडक होती थी वहाँ पे कोविड के होने का चांस ज्यादा होता। तो जब ये गर्म तापमान होता है तो ये कीड़े मकोड़े वाकई में समाप्त हो जाते हैं। स्पेशली ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया, कीटाणु ये सब होते हैं, इनकी मोर्टैलिटी ज्यादा होती है और ये समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक बेसिक साइंस है कि अगर आपको कीड़े मकोड़ों से बचना हो, आपके पानी को शुद्ध करना हो तो आप उसे गर्म कर लें। तो ये अधिक तापमान से उनका भी नुकसान था। और ये मौसम का बहुत एक प्यूरिफिकेशन का एक चक्र है। आदमी भी, इंसान भी, पशु पक्षी भी इस मौसम के दौरान जिस तरीके से ज्यादा पानी पीता है, फलों पे ज्यादा डिपेंड करता है, सब्जी ज्यादा खाते हैं, तो इससे एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये हमारे एक शुद्धिकरण का समय है। और जब फिर बारिश का समय आता है तो हम बिल्कुल ताजा होके पूरी ऊर्जा के साथ अपनी खेती में लगते हैं।
1: हम तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नौतपा के कई नुकसान हैं तो उसके फायदे भी हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये जो गर्मी, बारिश और सर्दी का चक्र है ये तीनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज गर्मी होती है तो हमारे समुद्र में भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश होती है, फिर सर्दी आती है तो ये बर्फ बन के हमारे हिमालय पे जमते हैं और वही वाटर टावर हमें देश की पूरी नदियों में पानी लाके पूरे देश को पानी देता है। तो एक ये चक्र है। और मैं चाहता हूँ कि चाहे वो नौतपा हो या स्नोफॉल हो या बारिश का मौसम हो, तीनों मौसमों को अपने समय चक्र के अनुसार भरपूर होना चाहिए। उसी में हमारी खुशहाली है।
1: ये खुशहाली बनी रहे और इसी खुशहाली को बनाए रखने के लिए इस दौरान, खासकर गर्मियों के मौसम, हालांकि हर मौसम में कुछ कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में देखा आपने शुरुआत में भी ये कहा कि नमी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, धरती बहुत ज्यादा सूख जाती है और इंसान भी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो
0: बिल्कुल, इंसान भी डिहाइड्रेट हो जाता है, लेकिन हर प्रकृति के मौसम के लिए प्रकृति ने आपको समस्याओं का समाधान भी दिया है
1: जी।
0: तो इसीलिए अगर आप सर्दी में 2 लीटर पानी पीते हैं तो नौतपा के दौरान आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। आप खाना समय पे जरूर खाएं, अच्छा पेट भरकर खाएं और तन पे जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से पहने। आप आराम जरूर करें, आप सोए जरूर, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और एक स्वस्थ जीवन जिसमें थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, इन सबों का अभ्यास करें तो मैं समझता हूँ हर मौसम चक्र के लिए, नौतपा ही क्यों, हर मौसम चक्र के लिए आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे
1: जी। कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप लाइटनिंग मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। तो ये जो लाइटनिंग है, अगर हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किस प्रकार समझाएंगे?
0: देखिए, हम सबों ने अपने घर की रसोई में देखा है, जब गर्म तवे पे आप पानी डालते हैं तो बहुत भाप उठता है
1: जी
0: और सीधा वो आसमान की ओर जाता है। ये नौतपा अभी हमारी धरती को वैसे ही तपा रहा है और जैसे बारिश आएगी, मतलब ये बादल के कण आएंगे, यहाँ एवेपोरेशन होगा, थंडरस्टॉर्म आएगी और ये थंडरस्टॉर्म जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये भाप के कण भी साथ में ऊपर जाते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। जब ये तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो ये भाप के कण बर्फ के कणों में बदल जाते हैं जिसे ग्रॉपेल कहते हैं। ये आपस में टकराते हैं और उससे घर्षण से बिजली पैदा होती है और यही बिजली इन्हीं भाप के कणों के माध्यम से जमीन पे गिरती है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जो वज्रपात है, अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में आकाशीय बिजली का आवाज और चमक के साथ जमीन पे गिरना, उसे कहते हैं। और इससे जो इंसान को नुकसान होता है वो सबसे पहले इंसान को करंट लगती है, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है और उसकी तत्काल मौत हो जाती है। उसकी आंख चमक के कारण उसको अंधा होने का खतरा होता है और जो बहुत तेज आवाज आती है उसके कारण आपके कानों के बहरेपन की संभावना है। तो वज्रपात भी एक आपदा मैं नहीं कहूंगा, ये एक प्रकृति का प्रोसेस है। और जब हम खेती के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे जो जमीन है, मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए ये वज्रपात होती है। और जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 79% वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको ये तोड़ के जमीन के साथ मिलाती है, मतलब खाद देने का काम करती है।
1: संजय जी, वैसे देखा जाता है कि इन दिनों यानी कि नौतपा के बाद में या फिर नौतपा के दौरान जैसे कि काफी धूल भरी आंधी चलती है और आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, तो अक्सर यानी कि पहली बारिश के समय बादल तेज गरजते हैं, बिजली कड़कती है, इसके क्या कारण है? शुरुआत में कुछ ज्यादा ही होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी धरती पे होगी, जैसे बादल आएंगे उतनी ही ज्यादा

0: एवेपोरेशन या थंडरस्टॉर्म होगा, और जो उसमें आसमान की ओर ऊपर उठने की गति है उतनी ही ज्यादा तेज होगी, उतनी ही ज्यादा घर्षण होती, और इसी के कारण ये बादल ज्यादा गरजते हैं और ज्यादा बरसते हैं।
1: जी जी,
0: नौतपा का जो पीरियड है हर जगह अलग अलग होता है, कुछ स्थानों पे नौतपा ऑलरेडी चल रहा है। इन ब्रॉड हम तो मानते हैं 25 मई से 2 जून तक, लेकिन बिहार के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न इलाके हैं, वहां नौतपा ऑलरेडी है, और वहां अभी मॉनसून आ रहा है, तो इस बार मॉनसून थोड़े जल्दी आ रहा है। आप देखेंगे 27-28 तारीख को जब मॉनसून केरल के तट पे आ जाएगा तो कुछ इलाकों में वज्रपात जल्दी शुरू हो जाएगी, बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी।
1: कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नौतपा के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी, सावधानियों के विषय में बातचीत किया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: अभी आप नौतपा गर्मी कारण और सावधानियां विषय पर प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव से कमल किशोर की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: इंजो दहलीस दुरूद और सलाम बार शिरांदगान असीस वरनामा सुबगा ये माँ दर सात नो वासी रही हिन बराबर बा सात हफ्तों सी रही है तेहरान इला सात याद हिन बराबर बा सात नो तेहरान पक्षमी शवत इनक बख्शे फारसी ये बरून मर्दी आकाशवाणी बरनामा सुबगा ये खुदरा दर मौज कूता दर रदीफा ये पावता हजारो ये सदोसी किलोहर पक्ष मी कुनत बरनामा ये सूबे अमरूद माँ इबारत आजिया का हंगे हिंदी अखबार हिंदो जान तराना फारसी तफसीर रूस गुफ्तार अमरूद बरनामा ये स्पॉटलाइट यक तराना फिल्मी तराने हाइये यक फिल्म हिंदी अखबार जहान व दर आखिर खुलासा ये अखबार इंजो दहलीस शरण का नजीब बरनामा सुबगाहिरा बाइया का हंगे हिंदी शुरू में कुनीम।

هنر بیشه گانه این فیلمی باراتن دا وینود کھنہ آشا پاریک

0: गुलशन
1: इंजॉय डेली श्रृंगार अजीज अकनून अखबार जहान राबे समेतान मीरा सानी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी

0: रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of

0: आंगन
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
2: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
2: और देखो,
1: और बिल्कुल बिल्कुल बोलो क्या बोलना।
2: देखो मंजुला, देखो घर आंगन कार्यक्रम है जहाँ पर बात होगी परिवार की, सेहत की, करियर की भी, और इतिहास की, गहराइयों की, संस्कृति की, और बहुत कुछ होगा आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि जिंदगी के छोटे बड़े पहलुओं की हम यहाँ बात करते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। खुद की पहचान बनाने वाली महिलाएं ही दुनिया बदलती हैं। अपने सपनों को पंख दो, आसमान खुद रास्ता दे देगा। जब एक स्त्री अपनी पहचान खुद बनाती है तो वो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, पूरे परिवार, समाज, आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। अभी आपने ये सुना, फिल्म थी नीला आकाश।
1: और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता बनाया। यह कहानी है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। आज के समय में डॉक्टर बनना एक करियर विकल्प है, लेकिन ज़रा सोचिए 18th century में जब लड़कियों की पढ़ाई तक पर सवाल उठते थे तब क्या होता था।
0: बिल्कुल, तब एक लड़की को डॉक्टर बनने का फैसला कितना बड़ा कदम रहा होगा ना मंजुला। आनंदीबाई का जन्म 1865 में हुआ। कम उम्र में शादी हुई, जो उस समय आम बात थी। उनकी जिंदगी का एक मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया।
1: और अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और देखो, एक भारतीय महिला उस दौर में विदेश जाकर मेडिकल पढ़ाई करने का निर्णय लेती है। न भाषा आसान, न हालात, लेकिन इरादा एकदम साफ था। वो अमेरिका गई, पढ़ाई की और 1886 में मेडिकल डिग्री हासिल की। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई और उन्होंने इतिहास रचा।
1: ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो समाज से आगे चलने की हिम्मत रखती है। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा रास्ता बना चुकी थी जिस पर आज लाखों महिलाएं आत्मविश्वास से चल रही हैं।
0: और कभी कभी देखो, बदलाव के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि बड़ा इरादा चाहिए होता है। आज जब हम अस्पताल में जाते हैं, महिला डॉक्टर से मिलते हैं या किसी लड़की को बड़े सपने देखते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते की शुरुआत आनंदीबाई जैसी महिलाओं ने ही की थी।
1: और सपना छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता, हौसला उसे सच बना दे बस इतना ही काफी होता है। कुछ लोग उम्र से नहीं अपने काम से जीते हैं और वही दुनिया में असली निशान छोड़ जाते हैं।

0: साधना सरगम और कुमार शानू की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी जुर्म।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
3: और दोस्तों, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें समय से परे होती हैं। हम उसी आवाज का जश्न मना रहे हैं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि भारत की धड़कन रही है। वो दौर जब एक रेडियो के आसपास पूरा परिवार जुटता था और हर कार्यक्रम एक साझा अनुभव बन जाता था।
0: और फिर आया डिजिटल युग और लगा कि शायद रेडियो पीछे छूट जाएगा, लेकिन आकाशवाणी ने खुद को और भी करीब आ गई। आज आकाशवाणी सिर्फ AM तक सीमित नहीं, बल्कि FM की दुनिया में भी इसकी मजबूत पहचान है। 1993 में आकाशवाणी ने एक नई पहल की, निजी कंपनियों को FM पर एयर टाइम देना शुरू किया।
3: दिल्ली और मुंबई से शुरू हुई ये पहल जल्द ही बड़े शहरों तक पहुंची और इसके साथ ही कंटेंट भी बदला। म्यूजिक, चैट शो और शहरी अंदाज के प्रोग्राम जो हैं वो लोकप्रिय हुए। आज यही FM हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, गाड़ी में, फोन में, हर जगह।
0: और अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स और लाइव चैनल लिंक के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुन सकते हैं। पॉडकास्ट ने भी सुनने का तरीका बदल दिया है, जहां समय की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ आपकी पसंद मायने रखती है।
3: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, तेजी से बदलती इस दुनिया में भी आकाशवाणी वही सुकून देती है, जहां आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। 90 साल का ये सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का है। तो सुनते रहिए, क्योंकि माध्यम बदलता है, लेकिन सच्ची आवाज हमेशा साथ रहती है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की, मंजुला, है ना, यानी कि SHG की, जो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा। ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करता है।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHG कैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में से कम ब्याज पर उसे लोन देता है।
1: और SHG का उद्देश्य लोगों विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद को भारी कर से बचाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और देखो भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, और सबसे प्रमुख जो है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है।
1: बिल्कुल, और इसके तहत समूह को शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी और अपने नजदीकी समूह से जुड़ने के लिए आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं।
0: और देखिए मंजुला, जानकारी तो हमारे श्रोता लेंगे ही, लेकिन हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, और जिसके लिए उन्हें हमें मेल करना होता है, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और हमें इंतज़ार रहेगा हमारे श्रोताओं के संदेशों का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तकदीर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और प्रतिभा, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ घूमने का बहाना नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने का मौका होती हैं। और अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग, कुछ खास ढूंढ रहे हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, ये सब बहुत हुआ, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज हम ले चलेंगे आपको उन जगहों पर जो सिर्फ देखी नहीं जाती है, महसूस की जाती है।
0: बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ले चलते हैं चोपड़ा, है ना, जहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है। यहाँ की असली खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं, उसके सन्नाटे में है,
2: शांति में।
0: यहाँ का तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और वहां तक का जो ट्रैक है, हर कदम पर बदलते नजारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप चंद्रशिला शिखर पर सूर्योदय देखते हैं तो वो पल कैमरे में नहीं बल्कि दिल में कैद होते हैं।
2: क्या बात है, तुम तो कविता पढ़ दिया तुमने। और शानगढ़, जहाँ वक्त धीमा हो जाता है, शानगढ़ की पहचान है उसका विशाल घास का मैदान, इतना खुला कि लगता है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। यहाँ एक शांगचूल महादेव मंदिर है, जहाँ के आसपास का इलाका बेहद पवित्र माना जाता है, जहाँ आज भी कोई पक्का निर्माण नहीं होता है।
0: और देखो, तवांग भी किसी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी तवांग को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि और गहरा ही बनाती है। और यहाँ का जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं सुनाई भी देती है। रास्ते में सेला पास, बर्फ से ढकी ऊंचाई और सेला झील जो बादलों के बीच तैरती सी लगती है, और फिर बुमला पास जहां भारत चीन सीमा है, और तवांग आपको ये नजारे ही नहीं देता बल्कि सुकून भी देता है।
2: बिल्कुल सही। और हाफलोंग बादलों का घर है, हाफलोंग की सबसे खास जगह है हाफलोंग झील, सुबह की धुंध में ढकी हुई जैसे कोई पेंटिंग हो। यहाँ के पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो बादल इतने करीब होंगे कि आपको छू कर निकल जाएंगे। हाफलोंग शोर से दूर नहीं बल्कि शांति के और करीब आपको ले जाता है।
0: और कनाताल की बात करें तो सादगी में छुपी खूबसूरती, कनाताल का जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण है उसका यहाँ पर अनछुआपन। यहाँ एक सुरकंडा देवी मंदिर ट्रैक है, छोटा लेकिन ऊपर से दिखने वाला 360 डिग्री व्यू, बस ये सब देखने के लायक। कनाताल इको पार्क, यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच चलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है। और रात में कैंपिंग के दौरान तारों से भरा आसमान जो शहरों से अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता।
2: तो दोस्तों, इस बार सिर्फ जगह मत बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, भीड़ से दूर जाइए उन रास्तों पर जहाँ कम लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर वही रास्ते आपको खुद से मिलाते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता और गीता से।
1: और मंजुला, देखो आज जब हम किसी भी क्षेत्र में नजर दौड़ाते हैं तो हम महिलाओं की भागीदारी हर जगह पाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुई हैं। शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, रक्षा से लेकर मनोरंजन, हर क्षेत्र में महिलाओं ने सफलता पाई है।
0: बिल्कुल सही कहा। रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो टूर गाइड इसको भी अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा सकता है। टूर गाइड के रूप में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त, स्वतंत्र तो बना ही रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और सांस्कृतिक जो परीक्षा होता है उसमें भी महिलाओं को मजबूत बना रहा है।
1: बिल्कुल। और देखो, साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत करके विदेशी भाषा सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। महिला पर्यटक विशेष रूप से महिला गाइड को ही प्राथमिकता देती है, और कुछ भी काम देखो आसान नहीं होता, अपने साथ चुनौतियां भी लाता है।
0: इस काम भी चुनौतियां हैं, असुरक्षा भाव बना रहता है, साथ ही लंबे टूर पर जाने या कई दिनों तक घर से बाहर रखने के कारण परिवार और बच्चों की देखभाल में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और देखो, अगर हमारे जो श्रोता हैं उनमें कोई महिलाएं हैं, अगर वो टूर गाइड बनना चाहती हैं तो कम से कम इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप पर्यटन या इतिहास में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। और आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड या डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो आप ट्रेवल कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं, या फिर एयरबीएनबी एक्सपीरियंस जैसे एप्स और वेबसाइट के माध्यम से

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बुलंदी।
1: बिल्कुल। और प्रतिभा, गर्मियों का मौसम आ चुका है और धूप, पसीना और धूल, ये तीनों मिलकर हमारे बालों की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा समर हेयर केयर रूटीन जो आसान भी है और असरदार भी। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, साफ सफाई। गर्मियों में सिर की त्वचा जल्दी तैलीय हो जाती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, तेल लगाना ना भूलें, नारियल या बादाम का हल्का सा तेल हफ्ते में 1 से 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए।
0: और अब बात करते हैं एक असरदार घरेलू हेयर मास्क के। मुल्तानी मिट्टी, दही, एलोवेरा जेल और करी पत्ता के पाउडर को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। इसे बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगाइए और 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लीजिए।
1: ये आपके सिर को ठंडक भी देगा, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
0: और एक और जरूरी बात यह कि गर्मियों में कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय बाल धोने के बाद हल्का सा हेयर सीरम लगाएं जो टॉक्सिन फ्री हो। इससे आपके जो बाल हैं वो मुलायम रहेंगे, सुलझे हुए रहेंगे और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे।
1: और हाँ, शरीर को भीतर से ठंडा और तरोताजा रखना भी उतना ही जरूरी है। भरपूर पानी पिएं और फलों को अपने भोजन में शामिल करें। बाहर निकलते समय बालों को धूप से बचाने के लिए दुपट्टा या टोपी पहने या फिर स्कार्फ लगाएं। तो दोस्तों, इस गर्मी अपने बालों को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिए,
0: क्योंकि जो हमारे अगर जो बाल हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो हमें असली खूबसूरती भी देंगे। लहराते बालों में छुपा है क्योंकि एक राज, और सादगी में भी झलकता है इन

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: हम सब उस्ताद हैं। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: अब बात ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी हुई। आज डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द सुनने में आम लगते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड का तरीका है जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति को डराते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वे पीड़ित को घर में ही डिजिटल रूप से कैद कर लेते हैं और छोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो जबकि कानून में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जालसाज तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कि आपके नाम का कोई कुरियर पकड़ा गया जिसमें गैर कानूनी सामान है, या आपके आधार से धोखाधड़ी करना और ये कहना कि आपका बैंक खाता या आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल सही। तो वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी पहनकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाना, पीड़ित को वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर करना और घर से न निकलने की धमकी देना। ऐसे में घबराए नहीं, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। तुरंत कॉल को काट दें और पुलिस की साइबर अपराध हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।
0: श्रोताओं, जानकारी के अभाव में आज बहुत से लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति में संयम बनाकर रखें और अपने घर के लोगों से बात जरूर करें।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप एक गीत सुन रहे हैं, फिल्म है मेरे सनम।
1: बिल्कुल, और आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय

0: एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: aimed at providing opportunities, employment, and global exposure to the youth of the nation. The Prime Minister noted that India is becoming the trusted supply chain partner of the globe.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: Mr. Modi added that every Indian is working with the commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: Bihar Chief Minister Samrat Chowdhury has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. The Bihar government today announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chowdhury said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त सुनिधि गुप्ता। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म की जिसने रिश्तों, त्याग और परिवार की एक नींव को और एकता को बड़े ही संवेदनशील अंदाज में पर्दे पर उतारा। जी हां, आज की हमारी फिल्म है खानदान। साल 1965 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन ए. भीम सिंह ने किया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे सुनील दत्त, नूतन, प्राण और ओम प्रकाश।

वाह क्या बात है। फिल्म का सबसे लोकप्रिय और अमर गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, जिसे अपनी मधुर आवाज़ दी थी लता मंगेशकर जी ने, और इस गीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। श्रोताओं, खानदान उस दौर की फिल्म थी जब परिवार और रिश्तों की भावनाएं फिल्मों का केंद्र हुआ करती थीं। फिल्म की कहानी दो भाइयों के पारिवारिक और परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां गलतफहमियां और लालच परिवार को बांट देते हैं, लेकिन लास्ट में प्रेम और अपनापन सबको फिर एक कर देता है। फिल्म में सुनील दत्त ने गोविंद का किरदार निभाया था, जिसका एक हाथ दुर्घटना में प्रभावित हो जाता है, और उनके अभिनय को इतना ज़्यादा सराहा गया कि उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की, और इससे जुड़े गानों से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, सुनवाते रहेंगे इसके सुप्रसिद्ध गाने, और इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं इसका इस फिल्म से जुड़ा एक और गीत।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म खानदान दरअसल निर्देशक ए भीम सिंह की तमिल फिल्म भागा पेरिवनई का हिंदी रूपांतरण थी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का संगीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि संगीतकार रवि को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। वहीं गीतकार राजेंद्र कृष्ण को तुम ही मेरे मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान भी मिला। श्रोताओं, 60 के दशक का संगीत आज भी दिलों में बसता है क्योंकि उसमें सादगी भी थी और आत्मा भी। फिल्म खानदान में रिश्तों की जटिलताओं को बहुत ही सहज तरीके से दिखाया गया। संयुक्त परिवार, संपत्ति का बंटवारा, भाईचारे की परीक्षा, ये सभी विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फिल्म में खलनायक की भूमिका में प्राण ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया और उस दौर में प्राण साहब का नाम ही दर्शकों में रोमांच भर देता था। तो बात हम करते रहेंगे फिल्म खानदान की, तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक और गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की। तो साल 1965 हिंदी सिनेमा के लिए बेहद सुनहरा साल माना जाता है। उसी वर्ष वक्त, गाइड और जब जब फूल खिले जैसी बड़ी बड़ी फिल्में भी आईं, लेकिन खानदान ने अपनी भावनात्मक कहानी और संगीत के दम पर अलग पहचान बनाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा चुलबुला गाना और मेले की रंगत से भरा हुआ गीत, ओ बल्लो सोच के मेले में जाना, इसी फिल्म से जुड़ा हुआ।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1964 में रिलीज़ हुई फ़िल्म खानदान की। तो उस दौर में फिल्मों की शूटिंग की तकनीक जो होती थी वो इतनी आधुनिक नहीं थी आज की जितनी। फिर भी कलाकारों का अभिनय इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता था कि दर्शक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाते थे। सुनील दत्त अपने गंभीर और संवेदनशील अभिनय के लिए जाने जाते थे और नूतन की सादगी भरी अदाकारी दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। इन दोनों की जोड़ी को इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत पसंद किया गया। दोस्तों, खानदान सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों का एक आईना है। इस फिल्म ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी दूरियाँ क्यों ना आ जाएं, परिवार का प्रेम अंततः सबको जोड़ ही देता है। और यही वजह है कि 6 दशक बाद भी ये फिल्म सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। तो आइए अब सुन लेते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भक्ति रस से भरा ये गीत।

श्रोताओं, सच ही कहा गया है कि पुरानी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थीं, महसूस की जाती थीं। खानदान भी एक ऐसी ही फिल्म है जो हमारे परिवार, हमारे रिश्तों और हमारी भावनाओं को जोड़ती हैं। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में जब रिश्तों के लिए हमारे पास समय नहीं हो रहा, समय कम पड़ता जा रहा है, तब ऐसी फिल्में हमें ठहर कर अपने और अपनों के बारे में सोचने का पूरा मौका देती हैं।

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मौके और मुलाजमत दस्तियाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रोशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन शराकत दार बन रहा है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCS कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकर्रुरीनामे तकसीम किए गए। RCS कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्नर्स, लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
0: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकर्रुरीनामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकर्रुरीनामे सौंपे गए। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका अहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में ICF रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलात में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12 लाख रोजगार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकर्रुरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश

0: तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकर्री का इम्तहान TRE 4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायज़ा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले NEET UG के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। सानवी तालीम के मरकज़ी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई तक थी। CBSE ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि तलबा जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फरहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुलकाहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में एबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। इस तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस वक्त इस वायरस के कौमी सतह पर फैल जाने का बहुत ज़्यादा, इलाकाई सतह पर ज़्यादा और आलमी सतह पर फैलने का कम अंदेशा है। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्री नामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की किस्म के खतरे को बहुत ज़्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों के
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1,00,000 teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare,

0: भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना

0: हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश

0: आदेश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दोस्तों, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के इस विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों, हिंदी और बांग्ला संगीत जगत में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं, जिनकी गायकी में मिठास भी होती है, मासूमियत भी और भावनाओं की गहराई भी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसी ही मधुर स्वर साधिका की, जिनकी आवाज़ ने 70 और 80 के दशक में संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी। तो आज की हमारी विशेष कलाकार हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी। तो आइए सुन लेते हैं इनसे जुड़ा एक गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना दो नैनों में आंसू भरे हैं। आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, 70 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आरती मुखर्जी ने अपनी विशिष्ट गायकी और कोमल आवाज़ के दम पर संगीतकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी आवाज में एक ऐसा घरेलूपन था, एक ऐसा अपनापन जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता था। उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें आरडी बर्मन, सलिल चौधरी और हेमंत कुमार प्रमुख हैं। तो आइए अब सुनते हैं उनका एक और बेहद चर्चित गीत।

दोस्तों, आरती मुखर्जी जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहीं। बांग्ला संगीत जगत में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने रविंद्र संगीत, नजरुल गीत और आधुनिक बांग्ला गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से नई ऊंचाइयां दीं। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव साफ दिखाई देती थी। यही कारण है कि उनके गीतों में भावनाओं की गहराई और सुरों की शुद्धता दोनों सुनाई देती थी। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और दुनिया भर के बंगाली संगीत प्रेमियों के बीच भी रही। तो इनके बारे में हम बात करते रहेंगे और ज़्यादा जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए पेश है एक और बेहद प्यारा गीत।

दोस्तों, आरती मुखर्जी को उनके शानदार योगदान के लिए कई सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और बांग्ला संगीत जगत में तो वे आज भी अत्यंत सम्मान के साथ याद की जाती हैं। उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी, बिना किसी बनावट के सीधे दिल से निकली हुई गायकी। वो उन चुनिंदा गायिकाओं में से शामिल हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही एक अलग पहचान महसूस होती है। उनके बारे में बात हम करते रहेंगे, लेकिन उनके गाए हुए इतने सारे, इतने सुंदर सुंदर गीत हैं कि बस लगता है कि मानो सुनते ही जाओ। आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में आरती मुखर्जी की। दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो की प्रतियोगिताएं भी जीती और इसमें अनेकों पुरस्कार जीते। इसके साथ साथ वो बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से लोकप्रिय रहीं। उनकी आवाज़ को संगीतकार अक्सर मीठी और भावपूर्ण कहा करते थे। फिल्म गीत गाता चल के गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। वो मंच की प्रस्तुतियाँ देने में बहुत ही निपुण थीं और बेहद पसंद की जाती थीं। तो इनके बारे में और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन पेश है इनकी फिल्म गीत गाता चल का एक और यादगार गीत, कर गया काना मिलन का वादा।

दोस्तों, आरती मुखर्जी की गायकी की सबसे बड़ी ताकत थी भावनाओं को सहज तरीके से पेश करना। चाहे भजन हो, रोमांटिक गीत हो या विरह का कोई संगीत हो, उन्होंने हर अंदाज को पूरी ईमानदारी से निभाया। उनकी आवाज़ में भारतीय मिट्टी की खुशबू हमेशा महसूस होती रही है। यही कारण है कि आज भी उनके पुराने गीत पुराने होने के बावजूद भी उतने ही ताज़े लगते हैं। तो आइए चलते चलते उनका गाया हुआ एक और गीत सुन लेते हैं जो आज भी सभी की जुबान पर है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना, का तुम जानो हो कि ब्रजभूमि के जो पुरातन मंदिर हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लीलान के साक्षी हैं, जिनमें ते जो राधा मदन मोहन मंदिर है वो सबते पुरानो मानव जाए है।
1: हाँ जी जी, और का तुम जानो हो कि मुख्य पौराणिक स्थलन में ते राधा दामोदर मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और जाके संगे कामा को आदि वृंदावन पुरातन मंदिर में शामिल हैं।
0: और वंदना, गोवर्धन को दान घाटी मंदिर और नंदगाम को नंद भवन तो तुम भूल ही गई।
1: और जी जी, पता है यहाँ के प्रमुख जो ऐतिहासिक रूप से प्राचीन मंदिर है ना, राधा मदन मोहन मंदिर, जे वृंदावन को सबसे पुराना मंदिर है जो काली घाट के पास है।
0: और अगर हम श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन की बात करें तो ये जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित मंदिर हो और यहाँ पे गोवर्धन शिला की पूजा हु करी जावे है।
1: हाँ जी जी, और राधा रमण मंदिर वृंदावन में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बाकी स्थापना कराई।
0: श्री राधा गोविंद देव मंदिर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वाको राजा मानसिंह द्वारा निर्माण भयो। कभी जे मंदिर जो होता ना वो 7 मंजिला भयो करतो।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: और जी जी, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है ना, वो भगवान कृष्ण के जन्म

0: राजस्थान को ही प्रमुख मंदिर है।
1: और कहा तुम जानो हो वंदना कि याकू प्राचीन कटरा केशव देव के नाम से जाना जाए है,
0: अच्छा जी,
1: और यहीं पे वो गर्भगृह है जहाँ पे कृष्ण को यानी अजन्मे को प्राकट्य भयो। और या के अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है वो स्वामी हरिदास द्वारा प्रकट किया गया, जो ब्रज को अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है।
0: हाँ जी, और राधा श्याम सुंदर मंदिर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 मुख्य मंदिरों में से एक है।
1: या के अतिरिक्त दाऊ जी को मंदिर जो बलदेव में है, और कामवन कामा में जाए आदि वृंदावन हु कहो जाए है, जहाँ मदन मोहन जी और कामेश्वर नाथ को जो शिव मंदिर है वो स्थित है। ये सभी मंदिर बहुत प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं।
0: हाँ जी, जय के संग में चंद्रावली देवी को मंदिर हूँ एक रहस्यमय मंदिर है, जो कि 5,000 वर्षों से अधिक समय से खुले आसमान के नीचे तो है।
1: देखो ब्रज क्षेत्र में तो वंदना मंदिरन की ही बात करी जाए है,
0: हाँ
1: देवालय तो ब्रज क्षेत्र की पहचान है। और आज हमने अपने श्रोतान को जो ब्रज के पौराणिक प्राचीन देवालय हैं इनके बारे में जानकारी दी। अब जानकारी ही दोगी या कछु सुनवाओगी अपने श्रोतान को?
0: हाँ जी, एक बढ़िया सो भजन सुनवाए दो जी।
1: तो आओ सुने हैं जी भक्ति गीत।

0: श्रोताओ अब ये आपने यह भक्ति गीत को आनंद लियो।
1: देखो वंदना कितनी गर्मी पड़ रही है।
0: अरे जी जी पूछो मत ही ना, तपन है रही है, तपन आग बरस रही है आग।
1: और देखो हमने इतना अच्छा लोकगीत सुनवाया है, या तो कछु सीरक तो तुम्हें मिली होगी।
0: हाँ करे जा ठंडो तो सब कुछ ठंडो।
1: हाँ ये बात।

0: तो तुम सही कह रही हो, पर देखो ब्रज में ना या समय गर्मी तो पड़ रही है, पर गर्मी की जो सब्जियां है ना वो खान पान में अगर हम प्रयोग में लाएं तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करेगा और हम स्वस्थ हो रहेंगे और गर्मी हम अच्छे से निकाल पाएंगे।
1: हाँ जी, देखो जैसे मैंने हवाल कही ना, करेजा ठंडो तो सब कुछ ठंडो, ऐसे भोजन करके जो हमारे आंत हूं ना वो स्वस्थ रहेंगी, तो ये सुनो शरीर ही स्वस्थ रहेगा।
0: देखो जैसे आजकल अमिया आ रही है, तो अमिया की चटनी, अमिया पुदीने की चटनी, और ये तो भोजन में रखनी रखनी चाहिए, और आम पनाव बनाए लेना चाहिए, आम की लौंजी बनाए लो, तो ये अमिया जो होवे ना गर्मी में बहुत ठंडक प्रदान करे।
1: हाँ जी, ए जी जी जी बताओ तुम मेरे घर कब आओगी, मैं तुमको बना के खवाऊंगी लौंजी।
0: लौंजी
1: हाँ
0: तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ के अतिरिक्त तो तुम्हें पता है गर्मी में बहुत सारी सब्जियों में
1: हाँ
0: जैसे भिंडी है, भिंडी जो हुआ है वो शरीर में शर्करा को नियंत्रित करे है,
1: जी
0: भिंडी
1: जी
0: खाना चाहिए, भिंडी सुपाच्य भी हुए जल्दी से पच जावे है।
1: और जी जी देखो भोजन को जैसे रच पच के बनाओगे वो स्वाद को और बढ़ाए देगा।
0: हाँ और यहाँ समय तो देखो लिसौड़े हैं जो ब्रज में ही बने, ये और कहूँ ना बने
1: हाँ जी, और देखो अमिया मिर्च छौंक के खाओ, चाहे
0: करौंदे,
1: हाँ
0: करौंदे भूल गई
1: हाँ
0: तुम,
1: तो इन्हें
0: करौंदे
1: छौंक के
0: मिर्ची।
1: खा लियो, सब्जी मत खाओ भले ही, ऐसे स्वाद रोटी एक आध ज्यादा खप जावे।
0: हाँ और करौंदे मिर्ची तो सब्जी की तरह ही खाए जामे, तो देखो ब्रज वाले जो है ना चटपटो खामे और खावे में रस लेके आमे,
1: कांची कह रहे जी जी
0: और देखो अगर खाएवे के बाद कचू मीठो खाएवे को मन कर रहे हो तो दही को श्रीखंड बनाए लियो,
1: हाँ जी, और का
0: श्रीखंड बनाए के खाए लियो वो कितना अच्छा है,
1: और का
0: आम बना की तो बात हमने करी, आमरस बनाए के पी लियो।
1: और का सीरो सीरो खाओ, फिर रहेगा अपने मन को सीरो करो और अपने आसपास का वातावरण में सीरो रखो।
0: तरबूज है, खरबूजा है, कुबेल है, ये सब चीजें हों तो शरीर को ठंडक प्रदान करें।
1: और का जी, खाए बेते बहुत संतुलन बैठ जाए, बाहर जाए वे के काज।
0: देखो ब्रजवासी जितना मीठो खामे, जितना सरस खामे ना, तभी तो इनकी बाणी में वो सरसता टपके।
1: हाँ जी, सांची कह रही हो आप जब बात को, तो तभी तो हमारे ब्रज के जो साहित्यकार हैं बिनकी वाणी में कितनो सरस मीठोपन और कितनी मधुरता है, और कितनी मधुरता ही। और जी जी बिनकी मधुर लेखनी को तो विश्व में कोई पढ़ ले वो आनंदित है जाए।
0: देखो वंदना ब्रज के बारे में, ब्रज में रह के अनेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने लिखो है और ब्रज भाषा में लिखो है, जिनमें
1: हाँ
0: सबसे अग्रणी नाम है सूरदास को,
1: सूरदास को जी
0: और
1: जी
0: सूरदास एक ऐसे कवि रहे जो दिव्यांग है पर फिर भी बिनने अपने अंतः चक्षुन्ते प्रभु को देखो और बिनकी बाल लीलान को, बिनकी अनेक लीलान को वर्णन किया।
1: हाँ जी, सूरदास जी के बारे में तो मैंने जीव पढ़ो है कि बिनकी नेत्रन की आकृति उनाई, जैसे दिव्यांग में आकृति तो होए पर बिनकी तो आकृति उनाई। जी जी फिरो बिनन ने कृष्ण भगवान की लीलान को ऐसा वर्णन किया है, और बिनकी रास लीलान को ऐसा वर्णन किया है, बिनकी बाल लीलान को ऐसा वर्णन किया है कि देखते ही बने जी जी
0: देखो वंदना भक्ति काल के साहित्य में अगर सूर साहित्य को हटाए दिया जाए तो वो अधूरा सा लगे है।
1: सांची।
0: सूर साहित्य की मधुरता और मिठास और बिनकी वाणी ने ब्रज साहित्य को अनश्वर बनाए दियो पूरे विश्व में, और आज हम सूर साहित्य पे ही बात करना चाह रहे हैं तो आज हम बात करेंगे अपने श्रोतान के समक्ष सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति विषय पे, या के वार्ताकार हैं विकास खन्ना।
2: ब्रज माधुरी के सभी रसक जन श्रोतान को राधे राधे। श्रोताओं, आज हम जा विषय पे चर्चा कर रहे हैं वह है सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति। जब कहूं भक्ति काव्य की बात होए है तो सूरदास को नाम बहुत ही श्रद्धा और आदर से लियो जाए है। वे केवल एक कवि नाए हते बल्कि कृष्ण प्रेम में डूबे भय ऐसे भक्त हते जिनकी वाणी आजउ जन जन के हृदय को स्पर्श करे है। सूरदास जी को काव्य मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति की सगुण धारा से संबंधित हते, जहाँ भगवान को साकार रूप में अनुभव कियो जाए। इनकी प्रमुख रचना सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलान ते लेके श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम तलक को बड़ो ही मार्मिक चित्रण मिले है। वात्सल्य भाव सूरदास जी की भक्ति को सबसे सुंदर पक्ष है। बिन्ने बालक कृष्ण कृष्ण की चंचलता को, बिनकी नटखट लीलान को और मैया यशोदा के असीम स्नेह को इतना जीवंत वर्णन किया कि सब कृष्ण प्रेमी जन वा दृश्य में सुन के ही खोए जाएं। एक बिन को प्रसिद्ध पद हते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जा पद में बालक कृष्ण की भोली चंचलता और मैया के संग बिन को संवाद बहुत ही सहज और हृदय को स्पर्श करवे वारो बन गयो। जाते अतर सूर साहित्य में माधुर्य भाव को हूँ अद्भुत चित्रण मिले है। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम को बिन ने बस लौकिक प्रेमी नाए बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रतीक मानो। राधा जी को विरह बिन की व्याकुलता और कृष्ण के प्रति बिन की अनन्य भक्ति, जे सब मिलके भक्ति को एक उच्चतम और आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचाए दे हैं। सूरदास जी के काव्य में विरह और संयोग दोनों को बहुत ही सुंदर समन्वय है। विरह में ज्या पीड़ा और तड़प है, वहीं संयोग में आनंद और परमानंद को अनुभव होए है। सूरदास जी ने विरह को भक्ति को सर्वोच्च रूप मान्यो है, क्योंकि विरह में भक्त को हृदय पूरी तरिया भगवान में लीन है जाए है। विनकी भक्ति में पुष्टि मार्ग को गहरो प्रभाव दिखाई दे है। वल्लभाचार्य जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम और अनुग्रह से संभवत है, और जयी भाव सूरदास जी के काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए है। यदि हम ब्रजभाषा और शैली की बात करें तो सूरदास जी ने ब्रजभाषा को बहुत ही मधुर प्रभावशाली प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल सरस और संगीतात्मक अत है, जो सूदे हृदय को स्पर्श करे है। अलंकारण को प्रयोग हूँ उनने सहजता से कीनो है। जाते काव्य में सौंदर्य और भाव दोन को अद्भुत संगम दी से है। सूरदास जी की भक्ति की बड़ी विशेषता है, इनकी भक्ति में सरलता निष्कपटता और पूर्ण समर्पण हते है। इनकी भक्ति में कोई दिखावो ना है, केवल प्रेम और केवल समर्पण हते है। यही कारण है कि इनको काव्य आजौ उतनो प्रासंगिक है जितनो के इनके समय में हतो। हम सबन को अति परम सौभाग्य है कि हम सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति को भाव सुनवे और जानवे को मिल रहे है। भक्त शिरोमणि सूरदास जू को नाम भक्ति आंदोलन में अति गौरव ते लियो जाए। इतिहास और परंपरा के अनुसार सूरदास जू को जन्म विक्रम संबत 1535 लगभग 1478 ईसा पूर्व के आसपास मान्यो जाए। सूरदास जी में ईश्वर कृपा सो बाल्यकाल ते ही अद्भुत भक्ति को उदय है गयो। सूरदास जी आँखें ते देख नाए पाते हैं, पर बिनकी अंतर्दृष्टि में संपूर्ण ब्रजलीला साक्षात प्रकट होती रही। भक्ति परंपरा में ऐसो मान्यो जाए कि सूरदास जू श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी के अवतार हते। वे उद्धव जो के ब्रज की गोपीन के प्रेम रस को पूर्ण मर्म नाए जान पाए, तो वे उद्धव सूरदास जी के रूप में अवतरित भय और ब्रज भक्ति और रहस्य जगत में प्रकट कियो। यही मान्यता सूर्य काव्य के भाव गंभीरता और आध्यात्मिक ऊंचाई को और बढ़ाए दे है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जू के शिष्य और पुष्टिमार के अनुयायी हते। इनको काव्य विशेष रूप से सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीला किशोर लीला और श्री राधा कृष्ण के प्रेम को अनुपम चित्रण मिले है। सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति को मुख्य रूप सगुण भक्ति है। ठाकुर जी को साकार और सानिध्य पूर्ण रूप बिन की भक्ति स्वरूप में अनुभव किया जाए है। वात्सल्य भाव में सूरदास जू ने यशोदा नंदलाल के प्रेम को अद्भुत चित्रण कियो है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत माकन तू खायो। इस पद में बालक कृष्ण की चपलता और भैया का वात्सल्य सजीव होए उठे है। जाई श्रृंखला में हम सूरदास जी के साहित्य में कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव को वर्णन जरूर करना चाहें। माधुर्य भाव राधा कृष्ण के प्रेम इंगित करे है। राधा कृष्ण को प्रेम केवल लौकिक नाए अपितु आत्मा परमात्मा को दिव्य मिलन है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को,

0: निस्दिन रहत उदासी, यहाँ गोपियन की तड़प और विरह भक्ति को चरम रूप दिखावत है। जाई क्रम में महाकवि सूरदास जी ने अपने साहित्य में विरह भाव की बड़ी विस्तृत विवेचना करी है। भक्ति को शिखर विरह भावे ही ये मानो जाए है। सूरदास जी ने विरह को अत्यंत मार्मिक रूप दियो। ऊधो मन ना भय दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। ये पद दिखावत है कि जब मन पूर्ण रूप तय कृष्ण मलिन हो जाए तो संसार में कछु शेष ना रहे। जाई क्रम में सूरदास जी ने संयोग भाव, जहाँ विरह में तड़प है वहीं संयोग में परमानंद की भी अद्भुत रचना करी है। श्याम तुम्ही बिन कौन सहारो, संयोग में भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। भाषा शैली और दर्शन, सूरदास जी ने ब्रज भाषा को अति मधुर सरस और संगीतात्मक रूप दियो। उनको काव्य सहज भावपूर्ण और आलंकारिक होते हुए भी सरल है। उनकी भक्ति पे पुष्टि मार्ग को गाढ़ो प्रभाव है, जहाँ प्रेम और कृपा सो ही प्रभु की भक्ति संभव मान्य जात है। सूर भक्ति की विशेषताएं निष्कपट पूर्ण समर्पण, लोक जीवन सो गाढ़ो संबंध, भावनात्मक गहराई है। अतः निष्कर्ष में हम ये कह सकें और यही कह वो उचित है कि सूर साहित्य हमें ये सिखावत है कि प्रभु तक पहुँचे को सहज मार्ग प्रेम है। जो मन निष्कपट होए समर्पण सो भरो, होए तो ठाकुर जी आपे ही मिल जाते हैं। सूरदास जी को काव्य आज भी उतनो ही प्रासंगिक है जितनो उनके समय में हतो। ये केवल काव्य ना है अपितु भक्ति को अमृत स्रोत है। श्रोताओं, जाई भाव के साथ आज हम सूरदास जी विशेष रूप से याद करे हैं और आपे ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि सूर को ही वो साहित्य है जहाँ में सबसे ज्यादा PhD साहित्य विभाग में लोगों ने करी है। तो जाते आपको सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति की विशेष स्थान को अपने आप अनुभव है जाए है। इसी भाव से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति या विषय पर वार्ता सुनी और यह वार्ता के वार्ताकार रहते विकास खन्ना।
2: तो चौना वंदना बहन, चलते चलते हम अपने श्रोतान को सूरदास जी को एक पद सुनवाए देवे आश्वना श्रीवास्तव के स्वर में।
1: हाँ जी जी, जा बात पे तो फिर चार चांद लग जाएंगे हमारे कार्यक्रम में।
2: तो श्रोताओं, लियो आनंद या पद को।

0: बताओ अभी आपने आश्वना श्रीवास्तव के स्वर में या पद को आनंद लियो। तो यही के संगे ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मुकु यानी के वंदना को
1: और मोई यानी शुद्धि बुरी को देव अनुमति।
0: राधे राधे, राधे।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: आइए सुनते हैं नाटक जीवन की चार सीढ़ियां। नाटककार रवि प्रकाश बी वर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: बेटा आलोक।
3: जी दादाजी।
2: जरा रेडियो की आवाज कम करो, बहुत शोर हो रहा है।
3: जी दादाजी।
2: हाँ?
3: अभी समाचारों में सुना, उस तराई वाले इलाके में कल रात बादल फटा है।
2: हाँ।
3: मोबाइल पर तस्वीरें देख रहा हूँ, पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। वो देखिए, उस बच्चे की आंखों में कितना डर है, देखकर रूह कांप रही है।
2: हाँ बेटा, इसे दया कहते हैं। जब किसी दूसरे की पीड़ा देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाए तो समझो कि इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन बेटा, दया की सार्थकता इसमें है कि वो विचार से निकलकर व्यवहार तक पहुंचे।
3: व्यवहार तक?
2: हाँ।
3: लेकिन दादाजी, हम यहाँ शहर में बैठकर क्या कर सकते हैं?
2: बेटा, समय आने पर हर व्यक्ति की परीक्षा होती है। चलो आज तुम्हें गांव की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ कल भारी बारिश ने बहुत कुछ बदल दिया है।

अरे सुनो, अरे किसी ने देखा है क्या? अरे मेरा बेटा किसी ने देखा है क्या? मेरे बच्चे को किसी ने देखा है क्या? मेरी माँ कहाँ है? बर्बाद हो मेरी माँ को ढूंढो कोई भी, कोई मेरी माँ को ढूंढो।

0: उफ दादाजी, हाँ यहाँ तो तबाही के निशान हर तरफ हैं।
1: हाँ बेटा
0: देखिए, रुक्मणी काकी की झोपड़ी का पिछला हिस्सा पूरा ढह गया है। उनका सारा सामान मलबे में दबा है। काकी का रो रो कर कितना बुरा हाल है।
1: हाँ बेटा,
2: अरे भाई मुनीम जी।
3: जी सरकार। जी।
2: अरे भाई कैमरा वैमरा निकालिए।
3: अभी लीजिए, ये लीजिए निकालिए।
2: ये कट्टे और कंबल बाहर निकालिए।
1: सुनो, जल्दी करो, जल्दी करो।
2: रुक्मणी, और रुक्मणी।
4: सेठ जी।
2: अरे भाई देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
3: देखो देखो।
2: मुनीम जी,
3: जी
2: फोटो जरा ठीक से लेना।
3: अरे हुजूर चिंता ना करिए, ऐसा फोटो लूंगा कि बस याद रखेंगे आप।
2: समझा करो, कल सोशल मीडिया और अखबार में सुर्खियों में आनी चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा हुजूर, बिल्कुल आएगा, सोशल मीडिया पे अखबारों में छा जाएगा।
4: लेकिन सेठ जी, इन सब चीज की क्या जरूरत थी?
2: जरूरत कैसे नहीं थी रुक्मणी?
3: हाँ थी थी
2: भाई, हम तो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं ना। अच्छा सुनो, ये लो 500 रुपए का नोट।
3: ले लो, रख लो।
2: अरे मुनीम जी, कंबल दो ना, कंबल।
3: जी हुजूर, मैं कंबल देता हूँ। ये लो, ये दो कंबल लो, दोनों ले लो।
4: दो
3: रख लो, सेठ जी बड़े दयालु हैं।
2: और सुनो रुक्मणी, अब सबको ठीक ठीक से बताना कि सेठ जी ने तुम्हारी कितनी मदद की है।
3: बताना जरूर।
4: हाँ सेठ जी, बता दूंगी सबको कि आपने कितनी मदद की है हमारी।
0: दादाजी, सेठ जी कितने परोपकारी हैं ना, कितना बड़ा दान दिया उन्होंने।
1: बेटा आलोक, ये दान नहीं, दिखावा है, दिखावा। अरे दान तो वो होता है जो सामने वाले के सम्मान को ठेस न पहुंचाए। सेठ जी ने उसे संसाधन तो दिए लेकिन उसकी गरीबी का विज्ञापन कर दिया। जो दान निर्भरता बढ़ाए और देने वाले में अहंकार भरे, वो समाज को खोखला करता है बेटा, समाज को खोखला कर देता है।
3: अरे माधव साहब, छोड़िए अभी, छोड़िए, छोड़ दीजिए, शाम के 5 बज गए हैं। ये नाला कल साफ हो जाएगा।
2: नहीं रामू नहीं।
3: क्यों?
2: अगर ये नाला अभी साफ नहीं हुआ तो रात को फिर बारिश होगी।
3: तो क्या हुआ?
2: और इस नाले का पानी रुक्मणी काकी और पास के 3 और घरों को बहा ले जाएगा। चलो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ जरा।
3: अरे लगाओ साहब, ये कोई हमारी निजी खेती थोड़े ही है। आप तो ऐसे फावड़ा चला रहे हैं जैसे आप इंजीनियर नहीं, कोई दिहाड़ी मजदूर हो। अरे साहब दुनिया क्या कहेगी?
2: रामू, दुनिया क्या कहेगी ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी आत्मा क्या कहेगी ये मुझे पता है।
3: अरे साहब
2: देखो, इस नाले की देखरेख मेरी जिम्मेदारी थी और मेरे आलस्य की वजह से अगर किसी का घर गिरता है तो उसका अपराधी मैं हूं। जिम्मेदारी किसी की कृपा नहीं होती रामू, ये वो कर्तव्य है जो आपकी भूमिका से भी जुड़ा होता है, और इसके लिए मुझे किसी शाबाशी बाबाशी की जरूरत नहीं है।
1: आप भी ना बड़े भावुक हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, खुद कीचड़ में लथपथ हैं। साहब इसे लोग जिम्मेदारी नहीं बेवकूफी कहेंगे।
2: बेवकूफी?
1: जी
2: रामू, अगर कल को डॉक्टर ये कहकर ऑपरेशन करना छोड़ दे कि उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, या सरहद पर फौजी ये कहे कि अब रात हो गई है मैं सोऊंगा, तो क्या ये देश बचेगा? जिम्मेदारी व्यवस्था की नींव होती है रामू।
1: जी
2: अच्छा छोड़ो, ये बहस छोड़ो और ये पत्थर उठाओ, चलो।
1: जी
2: चलो।
1: जी ठीक है साहब, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं भी हाथ लगाता
2: हूं। लगाओ हाथ।
0: दादाजी।
1: हाँ बेटा।
0: माधव भाई तो कमाल के इंसान हैं।
1: बेटा यही समाज की असली रीढ़ हैं। जिम्मेदारी चेतना और अनुशासन पर टिकी होती है, भावनाओं पर नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने।
5: काकी।

0: ये लो गरम गरम चाय।
1: अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी?
0: जरूरत कैसे नहीं है काकी, मैंने अपने घर का पिछला कमरा साफ कर दिया है। जब तक माधव बाबू आपका घर ठीक नहीं करवा देते, तब तक आप मेरे साथ ही रहेंगी।
1: तुम्हारे साथ रहूंगी?
0: हाँ।
1: अरे नहीं नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो।

0: ने तो पहले ही मुझे कितना कुछ दान कर दिया है। नहीं नहीं बेटी ना।
1: अरे काकी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? जब मेरी माँ गुजरी थी तब आपने ही तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। ये कोई एहसान नहीं है, मैं आपकी पीड़ा अपनी आंखों से देख रही हूँ। और एक बेटी का अपनी माँ की मदद करना कोई दान थोड़ी ही है, ये तो अपनापन है काकी।
0: मेरी बच्ची, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। इतना सब कुछ कर रही हो और इस पर भी कहती हो कि ये ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी।
1: बड़प्पन कैसा माँ जी, अगर किसी पर आपदा आए तो उसकी मदद करनी चाहिए दिल से, और मदद को एहसान का नाम क्यों दें?
0: वाह बेटी वाह, काश काश हर मदद करने वाले की सोच तुम जैसी हो जाए, तो ना मदद लेने वाला शर्मिंदा हो, हर हर मदद देने वाला तो हमारे लिए क्या बताऊं बेटी, तुमने ये जो मदद की है मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। मेरी बच्ची,
1: रोना बंद कीजिए माँ जी और ये चाय पीजिए, ठंडी हो रही है।
0: पीती हूँ, पीती हूँ।
1: हंस के दिखाइए मुझे।
0: खुश रहो, सदा खुश रहो।
1: ये हुई ना बात।
2: दादाजी।
3: हाँ बेटा।
2: ये सुजाता दीदी ने जो किया, क्या ये भी दान है?
3: नहीं आलोक बेटा, ये दान नहीं, दयालुता है। दयालुता में सहानुभूति और सम्मान दोनों होते हैं। सुजाता काकी की मदद कर रही है लेकिन उन्हें बेचारा नहीं बना रही है ना, समझ रहे हो ना? देखो, बेचारा नहीं बनाया उसने
2: जी।
3: और उसने सहायता को अपनत्व का रूप दिया। जहां दया महसूस की जाती है वहीं दयालुता की जाती है बेटा।
2: ओ, तो ये बात है दादाजी।
3: हाँ बेटा।

0: अरे ये आलोक को क्या हुआ? चुपचाप बैठा है, पूछता हूं इससे। अरे बेटा आलोक, आज चुप बहुत हो, कॉलेज में कुछ हुआ क्या?
1: दादाजी, आज मैंने एक ऐसी बात देखी जिससे मन बहुत दुखी हो गया।
0: ऐसा क्या देख लिया? खुलकर बताओ, खुलकर बताओ।
1: हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया है, रवि। उसके कपड़े बहुत साधारण से थे।
0: तो
1: कुछ लड़के उसे बहुत चिढ़ा रहे थे, कोई उसके साथ बैठना भी नहीं चाह रहा था।
0: तो तुमने क्या किया?
1: मैं बस चुपचाप देखता रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं।
0: देखो बेटा, कभी कभी चुप रहना भी गलत इंसान का साथ देने जैसा होता है।
1: मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दादाजी, अगर मैं उसके साथ बैठता तो बाकी लड़के मेरा भी मजाक बनाते।
0: देखो, सही काम करने वालों का मजाक शुरू में उड़ाया ही जाता है, लेकिन आखिर में वही लोग सम्मान पाते हैं।
1: लेकिन वो हमसे अलग है।
0: अलग? अलग कैसे है?
1: उसके कपड़े, उसका रहन सहन, सब कुछ अलग है।
0: बेटा, ये फर्क केवल बाहरी होता है। क्या तुमने उसके दिल को देखा, उसके विचारों को देखा?
1: नहीं।
0: तो बस, हर इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसके पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। देखो, मैं तुम्हें बचपन की एक कहानी सुनाता हूं।
1: कौन सी कहानी दादाजी?
0: सुनाता हूं, मेरे बचपन की कहानी है, सुनो ध्यान से।
1: जी।
0: देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो हमारे गांव में एक लड़का था, श्याम। वो बहुत गरीब था, बच्चे उसे अपने खेल में शामिल ही नहीं करते थे।
1: अच्छा।

0: फिर क्या हुआ?
1: बेटा एक दिन मैंने उसे अकेला बैठे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मैं उसके पास गया और उससे बातें करना शुरू की। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए।
0: और क्या बाकी बच्चे कुछ नहीं बोले?
1: नहीं नहीं, बहुत कुछ कहा बच्चों ने। मेरा भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया।
0: फिर
1: समय बीतता गया। वही श्याम पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बना, और जो बच्चे उसे तुच्छ समझते थे वही आजकल उसका सम्मान करते हैं।
0: ओह, मतलब इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं, उसके गुणों से होती है।
1: बेटा अब समझे तुम? देखो यही समानता है, हर व्यक्ति को बराबर समझना ही समानता है।
0: और दयालुता?
1: दयालुता का मतलब है किसी के दर्द को समझना और उसकी मदद करना। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के साथ खड़े होते हो ना, तो वही सच्ची इंसानियत है।
0: दादाजी, आज अगर मैं रवि के पास जाकर बैठता तो शायद उसे अच्छा लगता।
1: हाँ बेटा, तुम्हारा एक छोटा सा कदम उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: मैं कल से उसी के साथ बैठूंगा और उससे दोस्ती भी करूंगा।
1: शाबाश। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था।
0: लेकिन दादाजी, अगर बाकी लड़के फिर हंसे तो?
1: बेटा सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सही होता है।
0: अब मुझे डर नहीं लगेगा।
1: याद रखो बेटा, दयालुता तुम्हें बड़ा इंसान बनाती है और समानता तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। आओ बेटा मेरे गले लग जाओ।
0: धन्यवाद दादाजी, आज आपने मेरी सोच ही बदल दी।
1: बेटा जिंदगी में हमेशा सही का साथ देना
0: जी,
1: यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।
0: बिल्कुल दादाजी।
1: अब देखो ना, रुक्मणी का ही मामला देख लो। सुजाता के एक छोटे से साथ ने रुक्मणी में कितना हौसला भर दिया।
2: हाँ, इस मिट्टी को भी उठा ही लेती हूँ। थक गई। लेकिन नहीं रुक्मणी, तुझे थकना नहीं है। चल चल फिर से उठ, अपना काम करना है। खाका तो तैयार हो गया घर का।
3: अरे वाह रुक्मणी काकी, आपने तो बहुत अच्छा घर बना लिया।
2: सुजाता। अरे आ, अरे बेटी बना तो लिया, लेकिन किसकी वजह से?
3: किसकी वजह से?
2: अरे बेटी सारा काम तुम्हारा और मुझे से पूछ रही हो किसकी वजह से?
3: अरे नहीं काकी।
2: नहीं कैसे, हौसला और हिम्मत तो थी मुझ में, लेकिन तुम्हारे साथ ने उस हौसले और हिम्मत को बढ़ा दिया बेटी। हाँ, तुम्हारे साथ और अपने पन ने मुझ में एक नई ऊर्जा और हिम्मत भर दी बेटी। मैं तो हिम्मत हार ही गई थी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपने घर का ढांचा फिर से खड़ा कर लिया।
3: काकी, इंसान में हिम्मत हो ना तो वो पहाड़ भी तोड़ सकता है।
2: हाँ, यही बात तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। बेटी काश तुम्हारी तरह ही लोग दूसरों के दुख को समझकर उसकी सहायता करें। एहसान, दिखावे और बनावटीपन को छोड़कर सच्चा साथ दे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। तुम्हारे उस साथ ने, तुम्हारे उस प्यार ने, जानती हो सुजाता।

0: मुझ में कितना हौसला भर दिया बेटी, तभी मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाई कि अपने इस घर को फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारे उस प्यार ने, तुम्हारी गरम गरम चाय ने, इतनी सारी चीजों ने मुझे वो हौसला दिया।
1: काकी, अगर तुम जैसी हिम्मत वाली काकी हमारे साथ हो फिर तो इस गांव की मुश्किलें ही खत्म हो जाएं।
0: मुझ जैसी नहीं, तुम जैसी सुजाता। हाँ बेटी, तुम जैसी अगर और भी लड़कियां हो जाएं, तो हर किसी में इतना हिम्मत और हौसला आ सकता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। देखो, आपदा तो एक प्राकृतिक समस्या है।
1: जी काकी।
0: उसका निदान तो हम आपस में मिलजुल कर ही कर सकते हैं ना बेटी।
1: ये तो है काकी।
0: हाँ, हर वो तुमने किया, तुमने दिखाया मुझे रास्ता, है ना
1: काकी? इंसान एक बार ठान ले तो सब कुछ कर सकता है।
0: बिल्कुल सही सुजाता, और तुमने वही किया, तभी तो मैंने अपना घर कड़ा कर लिया।
1: हाँ, चाय, गर्मा गर्म चाय और।
0: हाँ हाँ, और वो भी मेरे नए घर में। चलो चलो बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ।
1: तुम भी ना काकी।
2: डियर स्टूडेंट्स, आज मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं, कि एक स्पेशल काउंसलिंग के लिए आया हूं, और वो है कि आज के दौर में हर कोई दौड़ रहा है, आपको मालूम है, और हम इस दौड़ में कुछ ना कुछ पीछे छूट जा रहा है।
1: यस सर।
2: आई मीन टू से कि जैसे कि पीछे छूटने का मतलब है हमारी वो मानवीय संवेदना है।
3: अरे, मानवीय संवेदनाओं की बात तो ठीक है,
4: और जो मानसिक तनाव की बात की थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
5: मानसिक शांति
4: मुझे बिल्कुल ज्यादा
1: अच्छा। बिल्कुल सर,
2: और वो है हमारी मानवीय संवेदनाएं और हमारी मानसिक शांति।
1: जी सर।
2: तो स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन। ओके
4: जी। सर,
2: यस यू
4: जी सर, करियर की इस दौड़ की वजह से जो तनाव पैदा होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
2: देखो, करियर के लिए महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है। समस्या दरअसल तब शुरू होती है जब हम सफलता की परिभाषा सिर्फ ऊंचे वेतन और पद से जोड़ लेते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आज का जो युवा है वो अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहा है, खासकर सोशल मीडिया को देखकर। इसे हम फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जब हम अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाते हैं या दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब किस्म का तनाव पैदा होता है, और यह बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है जिससे हम डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। राइट सर।
4: बिल्कुल सर।
1: सर, फिर ये तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं? मतलब हमें कब समझ जाना चाहिए कि बात हाथ से निकल गई है?
2: देखो, इसके लिए कुछ स्पष्ट संकेत हैं। मसलन, फॉर एग्जांपल, जैसे कि नींद पूरी ना होना।
1: यस सर।
2: या सोते समय में भी रोजमर्रा के हमारे काम के बारे में सोचते रहना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इन सब चीजों से होता क्या है कि हमारे स्वभाव में एक अलग तरीके का इरिटेशन आता है।
4: बिल्कुल सर।
2: आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं।
1: करेक्ट सर।
2: और ये ही वो कारण है जो कि हमारे तनाव को बढ़ा देते हैं।
6: सर
2: जी,
6: इस भागदौड़ के बीच मानसिक संतुलन बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
2: गुड क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर बाउंड्रीज। आपकी सीमाएं क्या हैं आप जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर कोई नंबर वन तो हो ही नहीं सकता। अपनी तुलना आप खुद से करें, आपका कंपटीशन खुद से है, आपकी लड़ाई खुद से है, दूसरों से नहीं। जब तक आप खुद में आत्मविश्वास नहीं तलाशेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी और आप फिर एक बार तनाव के शिकार हो जाएंगे, स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे।
4: यानी सर, सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि

0: एक स्वस्थ मन भी है।
1: राइट, एब्सोल्युटली राइट।
0: ओह,
1: आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि अब सेशन तो क्लोज हो गया होगा, अभी भी किसी की क्वेरीज हैं तो यू कैन स्पीक।
2: सर, आपने तनाव प्रबंधन के बारे में हमें जो गुड सिखाए वो वाकई काबिले तारीफ है।
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: थैंक्स ऑल ऑफ यू, मुझे आप लोगों से मिलके भी बड़ा अच्छा लगा।
4: थैंक यू सो मच सर।
2: थैंक यू।
5: अरे आलोक बेटा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हा?
0: जी दादाजी, आज हमारे कॉलेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हुआ जिसमें सर ने हमें इतना कुछ बताया कि मेरे मन में उठ रहे सारे सवालों का मुझे जवाब मिल गया।
5: अच्छा,
0: जो कुछ भी आपने मुझे बताया था वो सब उसी का सार था।
5: वाह वाह वाह वाह।
0: दादाजी,
5: हाँ।
0: आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा।
5: वो क्या बेटा?
0: मुझे लगता था कि ये सब एक ही चीजें हैं।
5: देखो बेटा, याद रखना, जिम्मेदारी वो नींव है जो व्यवस्था को संभालती है, और दया वो कोमल बीज है जो मनुष्य को पत्थर होने से बचाता है।
0: जी।
5: और दयालुता जानते हो क्या होती है?
0: क्या होती है
5: बेटा? दयालुता वो खाद पानी है जो संबंधों को जीवंत करता है। और दान वो फल है जो समाज में संतुलन लाता है, बशर्ते उसमें स्वार्थ का कीड़ा ना लगा हो।
0: अच्छा।
5: और हाँ बेटा, जब इंसान इन चारों को समझ लेता है तभी उसका जीवन नैतिक ही नहीं सार्थक बनता है। समझे बेटा कुछ?
0: बिल्कुल दादाजी।
5: तो अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाना जरूर, और जब भी आवश्यकता हो तो जिम्मेदारी के साथ दया दिखाते हुए दान से पीछे न हटना बेटा।
0: बिल्कुल दादाजी।
5: खुश रहो बेटा। समझे बेटा?
0: जी दादाजी, मैं अच्छी तरह समझ गया।
5: खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, समाज को ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझें, दूसरों की पीड़ा में दया महसूस करें, अपने व्यवहार में दयालु बने, और दान को दिखावा नहीं सेवा समझें।
0: जी दादाजी।
6: अभी आप सुन रहे थे नाटक जीवन की चार सीढ़ियां। नाटककार थे रवि प्रकाश बी वर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे हसन जैन, MH नियाजी, अर्जुन कौशिक, ममता मलकानी और अनु शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब समाचार प्रसारित होंगे।

杜特里广播电台听众朋友们，卡西祖是印度东北部美加拉亚邦德

0: 印度的李广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: जी हाँ, शाम के 5:30 बज चुके हैं और दिन है शनिवार का और आज का खेल खिलाड़ी अंक लेकर आज मैं हूं आपके साथ अतुल और मेरे साथ हैं
3: अर्शद।
2: जी हाँ, रोजाना की तरह बहुत सारी खेल खबरें हम लेकर आएंगे, इवेंट्स जो चल रही हैं उन पर बात करेंगे और अर्शद अगर बात करें तो नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है रांची में, उस पर भी बात होगी। उसके अलावा क्रिकेट आईपीएल जी हाँ अंतिम दौर में है, प्लेऑफ की दौड़ शुरू होने वाली है, उस पर बात करेंगे। और क्या है खेल खबरों में आज हमारे पास?
3: आज हमारे पास है डायमंड लीग जो कि चाइना में खेली जा रही है, उसके साथ है सुपर चेस क्लासिक रोमानिया में एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला यह हो रहा है, साथ होगा WTTE कंटेंडर्स लागोस में इसका मुकाबला खेला जा रहा है, बात करेंगे वियतनाम में खेले जा रहे U23 U17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की और साथ होंगी कुछ अन्य खबरें भी।
2: जी हाँ, कुछ अन्य खबरें भी और बात की हमने जो आज हम शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 29वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो कि रांची में चल रही है, कल इसका शुभारंभ हुआ था और 25 मई तक खेले जाने वाली है, बहुत सारे वहाँ रिकॉर्ड बन रहे हैं और आज शाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 100 मीटर फाइनल में मैन और फीमेंस का जो मुकाबला होगा उसमें अनिमेश कुजूर पर नजर रही होंगी। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। ट्रैक एंड फील्ड से है जहां अगले 3 दिनों तक लगातार शोर सुनाई देगा और उस शोर में से निकलेंगे कुछ ऐसे नाम जो देश का नाम भविष्य में रोशन करेंगे। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 की शुरुआत कल यानी 22 मई से रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम से हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से माहौल रोमांचक बना दिया है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चयन ट्रायल के रूप में भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले दिन की शुरुआत महिलाओं की 10,000 मीटर फाइनल दौड़ से हुई। महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 35:30.98 का समय निकाला। उत्तराखंड की सोनिया दूसरे स्थान पर रही जबकि महाराष्ट्र की ही आरती पवारा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने बेहतरीन रणनीति और दमदार फिनिश के साथ स्वर्ण पदक जीता। दीपक ने 29:42.93 का समय लिया। कर्नाटक के शैलेश कुशवाहा दूसरे और उत्तर प्रदेश के प्रशांत चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। सुबह के सत्र में पुरुषों की 100 मीटर और 400 मीटर स्पर्धाओं के शुरुआती राउंड भी आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने तेज रफ्तार के साथ अगले दौर में जगह बनाने की कोशिश की और दर्शकों को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, लेकिन दिन का सबसे बड़ा आकर्षण बना पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा जहां भारतीय एथलेटिक्स इतिहास का एक यादगार पल देखने को मिला। सेमीफाइनल मुकाबलों में गुरिंदर वीर सिंह ने पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ओडिशा के तेज धावक अनिमेश कुजूर ने उससे भी तेज दौड़ लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अनिमेश कुजूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10.15 का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन की ओर भी मजबूत कदम बढ़ाया। पहले दिन की यह रिकॉर्ड तोड़ स्पर्धा पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खबर बन गई।
4: There goes Animesh Kujur. Is he going to push himself? He is pushing himself. Look at that difference again.

0: गोइंग देयर, प्लीज इज अवे।
1: फील्ड इवेंट्स में महिलाओं की लॉन्ग जंप फाइनल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। भारतीय नौसेना की एनसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और मीट रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यह प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क के बेहद करीब माना जा रहा है। शैली सिंह दूसरे और भवानी यादव तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा में सर्विसेज के आशीष जाखड़ ने 68.52 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया। रिलायंस के दमनीत सिंह दूसरे और हरियाणा के अजय कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के डिस्कस थ्रो स्पर्धा में जेएसडब्ल्यू की सीमा ने 57.29 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा की निधि रानी दूसरे और रिलायंस की कृष्णा जयशंकर तीसरे स्थान पर रहीं। शाम के सत्र में महिलाओं और पुरुषों की 400 मीटर तथा 100 मीटर स्पर्धाओं के सेमीफाइनल मुकाबले भी आयोजित हुए। कई स्टार धावकों ने आसानी से फाइनल में प्रवेश किया। खिलाड़ियों की गति, ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। रात के अंतिम मुकाबलों में महिलाओं और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल स्पर्धाएं हुई। महिला वर्ग में उत्तराखंड की अंकिता ने 9:48.16 का समय निकाल स्वर्ण पदक जीता। IOCL की प्राची देवकर दूसरे और हरियाणा की अंजू तीसरे स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में हरियाणा के बालकिशन ने 8:56.01 का समय निकाल स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के शाहरुख खान दूसरे और गुजरात के सुनील जोलिया जिनाभा तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे दिन यानी आज के मॉर्निंग सेशन में खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड दोनों में जोरदार प्रदर्शन किया। अपने श्रोताओं को दोबारा बताना चाहेंगे कि यह प्रतियोगिता आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स चयन के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है। आज सुबह के सत्र की शुरुआत पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल और डेकाथलॉन स्पर्धाओं से हुई। इसके बाद महिला 100 मीटर और 400 मीटर सेमीफाइनल पर सबकी नजरें रहीं। पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल में 18 वर्षीय नितिन गुप्ता ने सभी को चौंकाते हुए 39:38.62 के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं अनुभवी संदीप दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि स्वर्ण जीतने के बावजूद नितिन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। महिला 100 मीटर सेमीफाइनल में शानदार रफ्तार देखने को मिली। दूसरे सेमीफाइनल में तमिलनाडु की गिरिधारानी रवि कुमार ने 11:52 के साथ सबसे तेज प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बनाई। महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने भी 11:63 के साथ दमदार दौड़ लगाई। अनुभवी धाविका श्रावणी नंदा भी फाइनल में पहुंचने वालों में शामिल रही। महिला 400 मीटर सेमीफाइनल में भी तेज रफ्तार देखने को मिली और शीर्ष एथलीटों ने फाइनल में जगह बनाई। दोपहर के सत्र में अब स्पर्धा का खिताबी मुकाबला होना है। दिन की अन्य स्पर्धाओं में पुरुष वर्ग के डेकाथलॉन मुकाबले भी जारी रहे और रिलायंस के तेजस्विन 8 इवेंट्स के बाद 6,751 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। तेजस्विन पहले दिन के अंत में भी शीर्ष पर बने हुए थे। प्रतियोगिता में अभी 2 इवेंट्स जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस बाकी हैं जो शाम के सत्र में आयोजित होंगी। आज सबकी निगाहें शाम के सत्र पर होंगी जहां पुरुष और महिला 100 मीटर फाइनल सहित कई पदक मुकाबले होने हैं। 100 मीटर में अनिमेश कुजूर फेवरेट हैं जिन्हें गुरिंदर वीर सिंह से बड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा महिला और पुरुष वर्ग के 400 मीटर के फाइनल होंगे। महिला वर्ग की 1500 मीटर रेस का फाइनल भी आज शाम ही होगा। फील्ड इवेंट्स की बात करें तो आज शाम महिलाओं के पोल वॉल्ट, ट्रिपल जंप, शॉट पुट और जेवलिन थ्रो के विजेता भी निर्धारित होंगे। पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बैरनिका इलान गोवन पर एक बार फिर सबकी निगाहें रहेंगी। कुल मिलाकर अभी तक के मुकाबलों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार की नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेहद प्रतिस्पर्धी होने वाली है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, युवा खिलाड़ी उभर रहे हैं और अनुभवी एथलीट भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं।
2: जी हाँ, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये थी इंडिया में हो रही एथलेटिक्स की बात। अब चलते हैं चीन, जहां पर डायमंड लीग खेली जा रही है। जानते हैं अतुल से क्या कुछ घट रहा है वहां पर।
1: एथलेटिक्स की ही बात हो रही है तो डायमंड लीग की भी जानकारी अपने सुनने वाले श्रोताओं को दे देते हैं। पिछले सप्ताह चीन के शंघाई केचियाओ चरण के बाद अब डायमंड लीग का अगला बड़ा मुकाबला आज चीन के शियामेन शहर के एग्रेट स्टेडियम में आयोजित होगा और सीजन का दूसरा चरण होगा। इस बार भी दुनिया के कई शीर्ष ट्रैक एंड फील्ड सितारे एक्शन में दिखाई देंगे। शुरुआती सूची में पुरुष 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर हर्डल्स, 5000 मीटर और लॉन्ग जंप जैसे मुकाबले शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में 200 मीटर, 1500 मीटर, 100 मीटर हर्डल्स, जेवलिन और डिस्कस थ्रो जैसे इवेंट आकर्षण का केंद्र होंगे। कई बड़े स्टार खिलाड़ियों पर इस चरण में खास नजर रहेगी। पुरुष शॉटपुट में अमेरिकी दिग्गज रयान क्राउजर की वापसी चर्चा में है। वहीं पुरुष

0: की तरफ, ये वो खेल जहां पर पूरे भारत का दिल धड़कता है। आईपीएल अपने अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। बहुत से रोमांचक मुकाबले अभी तक हमने देखे। कल एक मुकाबला खेला गया था एसआरएच और आरसीबी के बीच, 200 से ऊपर स्कोर गया, बड़ा ही रोमांचक खेल था। आइए जानते हैं अतुल से क्या कुछ घटा कल के खेल में।
1: आईपीएल 2026 में कल खेले गए एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी को आखिरी लीग मैच में 55 रन से हरा दिया। आरसीबी के लिए टीम के कप्तान रजत पाटीदार ने संघर्ष भरी अर्धशतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। हैदराबाद की ये 14 मैचों में 9वीं जीत रही, जबकि आरसीबी की ये 14 मैचों में 5वीं हार रही। हैदराबाद की जीत में अहम भूमिका ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन की अर्धशतकीय पारियों ने निभाई। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल 2026 का 67वां मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए और आरसीबी को जीत के लिए 256 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन बनाए। हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर तेज तर्रार अर्धशतक लगाया और वो 56 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान ने 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और ये उनका इस सीजन का छठा अर्धशतक भी रहा। ईशान ने 46 गेंदों में 79 रन की पारी खेली, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 12 गेंदों पर 29 रन बनाए और नाबाद रहे। क्लासेन ने भी 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 51 रन बनाकर आउट हो गए। आरसीबी के लिए रसिक सलाम को 2, जबकि कुणाल पांड्या को और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता मिली। बात करें आरसीबी की पारी की तो कोहली ने पारी की शुरुआत करते हुए 15 रन की पारी खेली, जबकि वेंकटेश अय्यर 44 रन बनाकर आउट हुए। देवदत्त पड्डिकल 21 रन की पारी खेलकर पेवोलिन लौट गए। रजत पाटीदार ने 37 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। कुणाल पंड्या 41 रन, जबकि टिम डेविड 15 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद के लिए ईशान मलिंगा ने 2, जबकि शाकिब हुसैन और ट्रेविस हेट ने 1-1 विकेट लिया। इस मैच के लिए हैदराबाद ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, जबकि आरसीबी ने अपने अंतिम 11 में एक बदलाव किया था। आरसीबी के ओपनर जैकब बेथल टीम से बाहर हुए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार की इस मैच में वापसी हुई। मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच डेनियल विटोरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: No, we played really well. It's like you can't have everything. It was a magnificent game. I thought the guys were incredible. Brilliant. Top of the table, missed a little bit out on run rate. 9 wins is a fantastic tournament. Look, I think it's always about juggling our fifth and sixth bowler. That's a big one for us. And we went with Harshal Patel tonight just because of the nature of the surface. But we know we've got Hinga and Harsh Dubé. We've got a middle order who probably hasn't batted that much during the season. So that's something that we always keep an eye on the build-up towards these big matches. But the team's been amazing. That top four's been brilliant. And that triumvirate of Ishan, Pat and Shakib in the later half of the season has probably been the real difference for us. And I think it was exactly how we anticipated. That's why we batted first. I think it was like the Punjab wicket where there are a lot of runs to be had, but like the Punjab game, RCB dropped a lot of catches, which actually gave us more runs than we potentially deserve. So the score looked bigger than you would normally imagine. But I thought 200 to 220 was a really good score on that surface. Yeah, very happy. I mean, like I said before, those three fast bowlers have been exceptional, and we've had contributions from Harsh Dubé, from Shivang, from Nitish, from Hinge, that have allowed us to come back from losing three of our first four games, and to win 8 out of the next 12 is a real, real credit to them. I think we anticipate our batting unit doing what they did, and then for the bowlers to compliment them was the reason we're in the position we are now. I think you've seen our openers bat for 14 games for 3 years. They're gonna take anyone on, and it doesn't swing in Hyderabad, so that negates a big percentage of what Bhuvi does. And he's been an exceptional bowler for every team he's been at, and he's had another fantastic year. So to have any chance of winning, we had to take him on, and fortunately today was our day.
0: जी हाँ, आरसीबी का मुकाबला था कल और बड़ा ही रोमांचक

0: मुकाबला था, लेकिन आज आज डू और डाई मैच है पंजाब के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ये खेलेंगे, अगर आज पंजाब जीतते हैं तो आगे जाने का उनके पास मौका है। बाकी अतुल से जानते हैं।
1: आईपीएल 2026 में जैसे जैसे लीग मैचेस खत्म होने को हैं और प्लेऑफ की दौड़ शुरू होने को है, रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। कुछ टीम्स अगले दौर में पहुंच चुकी हैं और कुछ अभी भी रेस में हैं। इसी क्रम में लगातार 6 मैच से हार झेल रही पंजाब किंग्स की टीम इस निराशा को बुलाकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली सी आस की हकीकत में बदलने को बेताब होगी। इसके लिए आज शाम उसे लखनऊ में होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, उसे किस्मत का साथ भी चाहिए होगा। उसका प्लेऑफ में पहुंचना जीत के अलावा कल होने वाले दोनों मैचों के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। अब देखना यह होगा कि लगातार 6 मैच गंवा चुकी पिछले सीजन की

0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: इंद्रवीर तेवतिया, रावणसुंदरी डिस्ट्रिक्ट बुलंद शहर से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बबीता की गाई हुई बढ़िया सी रागनी सुनवा देना, कुछ नाम लेने चाहूँगा
0: जी।
1: सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, प्रत्यक्ष, हमारी बुआ जी है राजवीरी, गांव खुशियालपुर से शेर सिंह मोदी, बाबा सन्नू और पंडित रतन लाल, खतौना से मास्टर हरिंदर सिंह, और मंडौना जाफराबाद से मुंशी जी विक्रम सिंह और राजेंद्र सिंह।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार। हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज के कलाकार है जी बबीता चौधरी और बनवारी लाल यादव जी गामड़ी वाले, और शमशेर जी द्वारका से, और मुंशी भाई जी की आपने भेंट वार्ता सुनाई, बहुत अच्छी लगी। राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बबीता चौधरी से ये रागनी। किस्सा रहेगा अंजना पवन का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा से।
0: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: राजेंद्र जाटव की आवाज में एक लोकगीत सुना दी। हमारे दोस्त है शीश पाल अकेला जी, बबली कुमार प्रजापति जी और रामनिवास अग्रवाल।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, सरस्वती बाबू को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: राजेंद्र जाठव को
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल के अध्यक्ष प्रियंशी।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: राजेंद्र जाटो को सुना देना जी,
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं हरी सिंह सैनी, पचुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश यूपी से बोल रहा हूँ जी।
0: हरी सिंह जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: राजेंद्र जाटव को सुनवा देना,
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और कुछ नाम है जी, देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर, पोती पोता है कुछ, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, सिनीचा, चंदन और मेरा भांजा गोविंद, मनोज, हरिचंद और मेरे रिश्तेदार संजीव, ज्योति और गीता।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: भाई जी राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: गंगा नए बात से घनश्याम बोल रहा हूँ।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज के कलाकार है राजेंद्र जाटव की आवाज पसंद है,
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: दो नाम ले लू?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: मेरी बहन ज्ञान श्री अनंत प्रधान है, तो आकाश पानी तू सबको राम राम।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर राजेंद्र जाटव से ये रागनी, खिस्सा रहेगा सरवर नीर का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को है, आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानों भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट

0: जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हमारे किसान भाइयों को खेती के साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ साथ ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसी क्रम में सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है, और साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसके साथ ही सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
1: बिल्कुल शशि भाई, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग करके मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप योग्य माने जाते हैं। अगर आप पहले से ही मधुमक्खी पालन स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, और जो भी हमारे किसान बहन भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से इस मौसम में मधुमक्खियों का प्रबंधन करें, खास करके इसके माइग्रेशन को कैसे रोकें, तो इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रवण एम हलधर जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सभी किसान बहन भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार, राम राम जी।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान बहन भाई हैं जो अब तक खेती कर रहे हैं, और उन्होंने सुना भी होगा मधुमक्खी पालन के बारे में, लेकिन वो अब करना चाहते हैं, तो किस तरह से इसकी शुरुआत वो कर सकते हैं, कैसे करें, कहाँ से करें, और कौन कौन सी जो प्रजाति हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी?
2: भारत के अंदर अपन दो स्पेसीज इतने दिनों तक थी जिसको हम रियर कर सकते थे। एक है एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन भी बोलते हैं, और अभी भारत के अंदर 80 से 85% जो शहद आ रहा है वो एपिस मेलिफेरा से आ रहा है। बट एक हमारे भारतीय बी भी है, एपिस सेरेना इंडिका, उसकी 3 सब स्पेसीज है। वो भी नॉर्थ ईस्ट में अगर जाओगे तो उधर एपिस सेरेना हिमालयंस मिलेगी, साउथ में जाओगे तो एपिस सेरेना इंडिका मिलेगी, और सेंट्रल इंडिया के अंदर एपिस सेरेना सेरेना मिलेगी। और दोनों ही प्रकार की जो स्पेसीज है उसको किसान और मधुमक्खी पालक है उसको रियर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अंतर क्या है, आपका जो एपिस मेलिफेरा है, इटालियन बी जिसको बोलते हैं, इससे जो एक छत्ता या एक जो बॉक्स होता है उससे आप 30 से 35 किलो हनी एक साल में और शहद ले सकते हैं। बट इंडियन बी जो है उससे 10 से 15 किलो आपको शहद मिलता है। बट उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट और जो प्रोलिन कंटेंट, ये चीजें जो होती है वो अच्छी होती है। बट उसको हर जगह रियर नहीं कर सकते, उसमें स्वार्मिंग और माइग्रेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इटालियन भी है जिसको इजीली किसान भाई ज्यादातर जगह कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और जैसा कि आपने बताया कि भाई पेटियों की भी इसमें आवश्यकता होती है, और जो मधुमक्खी उनकी जो अच्छी जो प्रजाति है उनकी आवश्यकता होती है, तो कितनी पेटियों के साथ कोई भी हमारे जो किसान भाई या युवा साथी हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, और

0: ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरुआत करने से पहले वो कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं?
1: अगर मधुमक्खी पालन आप करना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग भारत के अंदर ज़्यादातर जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान विभाग होता है, उनके अंदर ज़्यादातर सेंटर है। अगर दिल्ली के आसपास आप देखो तो हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है जो 5 दिन की ट्रेनिंग भी देता है, 10 दिन की ट्रेनिंग भी देता है। और उसके अलावा आप दूसरी जगह अगर साउथ में जाओगे तो कर्नाटका के अंदर भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, जहां पे एक क्रीप ऑन हनीबी एंड पोलिनेटर्स का एक सेंटर चलता है और उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप पन्नगर जाओगे उत्तराखंड के अंदर, वहां पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो मणिपुर के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पासीघाट में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग राज्य में जाते हो तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं मधुमक्खी पालक को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम पहली बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 100 डिब्बों के साथ आप स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका डेली का रूटीन जो मनी होता है, इसको कैश मनी बोलते हैं, क्योंकि जो खेती करते हैं उसके अंदर कैश आपको 6 महीने और 1 साल में मिलता है, और इससे आप रोजाना इससे कमा सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको इनकम इससे मिल सकती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं पात्रता की, कि जो भी हमारे युवा साथी हैं या जो मधुमक्खी का पालन करना चाहते हैं तो पात्रता मतलब किस बेस पर उनको ट्रेनिंग में आने का मौका दिया जाता है?
1: इसके अंदर ऐसे कोई पात्रता नहीं है, पर 10वीं और 12वीं होती है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 से 7 दिन और 10 दिन का, उसके बाद में जो नेशनल बी बोर्ड है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर जो आपको अनुदान दिया जाएगा उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है। स्टेट गवर्नमेंट किसानों को अलग अलग एरिया में जो बी कीपर्स है उनको इसके लिए अनुदान दिया जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने अनुदान की बात की, तो हमारे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लेकर के काम करना चाहते हैं, तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका कि ये मधुमक्खी पालक हैं उनका लाभ ले सकते हैं?
1: भारत सरकार ने 2018 के अंदर 500 करोड़ मधुमक्खी के लिए स्पेशल एक पैकेज दिया गया, जिससे कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो शहद पैदा किया जाए। उसी के बेसिस पे नेशनल बी बोर्ड है, NBB जो है दिल्ली के अंदर है, वो अनुदान अलग अलग स्टेट को देती है, स्टेट अनुदान बी कीपर्स को देते हैं। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेगा उसी के बेसिस पे आपको 100 बॉक्स के 50 बॉक्स के अलग अलग जो लेना चाहते हैं उसके ऊपर उनका कुछ परसेंट होता है, वो अनुदान उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी कॉलोनी दी जाती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग करते हो तो उसके लिए कॉलोनी एक इम्पोर्टेंट होती है और उसको साथ में लेना होता है, तो आपको बॉक्स के साथ आपकी कॉलोनी भी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अब बात करते हैं, जैसे कि शहद तो हमें मिलता ही मिलता है मधुमक्खियों से, इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं?
1: जो आप एपिकल्चर करते हो, मधुमक्खी पालन करते हो, इसे एक शहद एक पार्ट नहीं है, इसके अलावा आपको वैक्स इससे मिलता है, इससे प्रोपोलिस मिलता है, और इसके अलावा जो स्टिंग्स से जो निकलता है वो भी आपको मिलता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इससे निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जब हनी को, जैसे हनी डेथ पीरियड हम बोलते हैं, जिस टाइम पोलिनेशन नहीं होता है, तो उस टाइम उसके रियर के लिए पोलन्स भी हमारे को कलेक्ट करते हैं, तो जब हनी फ्लो पीरियड होता है उस टाइम बीज कलेक्शन बहुत ज्यादा पोलन का लेके आती है, तो उसको भी आप इकट्ठा करके उससे भी आप मार्केट डेवलप कर सकते हो, और आप उसको मधुमक्खी को भी जब गर्मियों में जब जरूरत पड़ती है उस टाइम आप उनको खिला सकते हो।
0: डॉक्टर साहब, एक बात सुनने में आती है कि जो भी मधुमक्खियों की पेटियां होती हैं, और अक्सर देखते हैं कि जो कुछ किसान भाई हैं कि अपने खेतों के आसपास नहीं रखने देते, कहते हैं भाई हमारी जो फसलें हैं वो कमजोर हो जाएंगी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: ये जो किसान भाई अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका सरसों का खेत है और सर्दियों के अंदर आपने 20 पेटी 50 पेटी या 100 बॉक्स आपने रख लिए, तो आपका 20 से 30% आपका यील्ड उसका इंक्रीज हो जाता है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी बी कीपर्स है वो फार्मर्स हैं, उसके लिए उनकी डिमांड होती है फार्मर्स की कि हमारे खेत में रखो, जिससे उसको मिनिमम पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे, क्योंकि ये पोलिनेशन सबसे ज्यादा जो क्रॉस पोलिनेटेड जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर जो पोलिनेशन करती है वो एक बी ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा होता है या एपिकल्चर से होता है।
0: तो बिल्कुल, ये बात हमारे किसान बहन भाइयों को समझने की है कि जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे पॉलिनेशन होता है, पराकरण होता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है, जिससे हमारा जो फसल उत्पादन है वो ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, जो भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं मधुमक्खियों को पालन करते चले आ रहे हैं और गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में वो किस तरह से प्रबंधन करें ताकि उनको अच्छा उत्पाद मिले, शायद अच्छा मिले, और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में माइग्रेशन को कैसे रोकें?
1: मैं इसके अंदर दो चीजें बताना चाहूंगा कि हनी बी है और जो एपिकल्चर है वो दो प्रकार से करते हैं। एक भारतीय बी है जिसको आप एक जगह रह करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पे एक घर के अंदर, क्योंकि वहां टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता नहीं है, तो वो एक जगह ही रख

0: करके उसको पोलन सब्स्टिट्यूट और जो आर्टिफिशियल शहद होता है वो दे करके और शुगर दे करके उसको रियरिंग और एक जगह माइग्रेशन को उसको रोक लेते हैं। बट जो दिल्ली हरियाणा पंजाब इस एरिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 40 से ऊपर चला जाता है, जैसे ही 35 और 37 38 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो आपकी जो इटालियन भी जो इस एरिया में 80% रेयर करते हैं वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान भाई, जैसे ही अप्रैल होता है यहाँ से उसको माइग्रेट करके और उत्तराखंड और हाई अल्टीट्यूड जो एरिया है जहाँ पे ठंडा एरिया है जहाँ पे उसको पोलन मिल सके और आर्टिफिशियल डाइट भी दे सकते वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि अगर आपको एक ही जगह रखना है और लिमिटेड एरिया में आपको डेवलप करना है, क्योंकि 40 से ऊपर जाएगा तो इसको बहुत मुश्किल होता है, बट अगर फिर भी आपको जैसे आपको छाया मिल गई, आपको 10-20 बॉक्स घर के लिए, आपको 2 बॉक्स आपको रियर करने हैं, उनको रखने के लिए आपको जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके अंदर जो बोरी का टाट जो होता है उसके ऊपर डाल दिया जाए जैसे दोपहर के टाइम में, जिससे उसको रख सकते हैं। एक जो पेड़ होते हैं या आप ग्रीन नेट या छाया लगा करके उसके नीचे रखा जाए जिससे कि उनको टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़े। दूसरी आपको जो बी कीपिंग का जो बॉक्स होता है उसको वहीं पे रखना है जहां पे पानी की सुविधा हो। दूसरी यह है कि गर्मियां होती है उस टाइम आपके पास पोलन फील्ड के अंदर होते नहीं है, तो उस टाइम आपको जैसे शुगर है, आपका हनी है, इनको मिला करके 1:1 रेशियो और अलग अलग टाइप के पोलन सब्स्टिट्यूट आजकल मार्केट में भी आते हैं, परागकण को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब डेथ पीरियड हम बोलते हैं, जब हनी नहीं निकलता है, जब पोलन होते नहीं है, तो उस टाइम उसको खिलाया जाता है जिससे कि उसका माइग्रेशन बॉक्स छोड़ के दूसरे में नहीं जाए। तो इस टाइप के अपन कई चीजें होती है। और जैसे गर्मियां होती है इस टाइम माइट की भी थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वेरो माइट है वो जो मेजर प्रॉब्लम करती है, जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसकी प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइमली उसको देखना, और फॉर्मिक एसिड भी एक आता है उसको भी मिनिमम आप यूज करके और उसका कंट्रोल कर सकते हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब। और चलते चलते हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक स्लोगन भी है कि अगर मैं दोबारा अगर कहीं रहूंगा या सरवाइव करूंगा तो मैं एक मधुमक्खी जैसे, क्योंकि मधुमक्खी को हम सोशल इंसेक्ट बोलते हैं, जो कि सबको साथ लेके अपनी कॉलोनी को पूरी को साथ लेके मेंटेन रह करके देती देती है, ज्यादा से ज्यादा उसका कितने प्रोडक्ट है, कितना पोलिनेशन, अगर वो नहीं होगा तो आपके आपका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपका बीज और पोलिनेटर्स नहीं होंगे तो।
1: बिल्कुल डॉक्टर श्रवण एम हल्दर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए, और आपकी दी गई बातों का वो ज़रूर लाभ लेंगे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किसान बहन भाइयों आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश, और कलाकार थे बलराम बैसला।
1: नीलम बहन, भारत सरकार हमारे देश के किसान भाई और गरीब नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण और दूध की उत्पादकता में वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के लिए काम किया जाए।
0: बिल्कुल शशि भाई, पशुपालन में गाय हम सबका आधार रही है। गाय का महत्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गाय का सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व माना गया है। इस योजना के जरिए भारतीय देसी गाय की नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी,

0: आर पार कर रेड सिंधी गायों का विकास किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के जरिए इनकी नस्ल को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा।
1: बिल्कुल, इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो भारत के छोटे पशुपालक और किसान भाई हैं उन सभी को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। यदि कोई किसान सरकारी कर्मचारी है या वो सरकारी पेंशन लेता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी पशुपालन और डेयरी विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। और अब नीलम बहन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए। लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम और इसके साथ ही राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस पर जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा बहन भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर जानकारी सुनेंगे।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं और अब सुनते हैं गजल। आइए सुनवाते हैं चंदन दास की आवाज में ये खूबसूरत गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी और इसी के साथ गज़लों का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी

0: दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी की सड़कों पर कल देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य का ऐतिहासिक संगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज हुई वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल 92.49 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा के एडी ब्लॉक और पीतमपुरा के एपी ब्लॉक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में बेहतर सड़कें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, पैदल मार्ग, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय और बेहतर सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य निवासियों के लिए दैनिक जीवन को स्वच्छ, सुगम और अधिक सुविधाजनक बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर क्षेत्र में दृश्यमान, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कीर्तिनगर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप्स की विशाल प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कई नई पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदर्शित स्टार्टअप का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के सहयोग से मूल्यांकन भी किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन कर उसे दिल्ली में लागू कर रहे हैं।
3: पॉल्यूशन ये 2 महीने का चैलेंज नहीं है, ये साल भर करने वाला काम है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार हर संभव प्रयास जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए है, पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो काम कर रही है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते हमने बहुत सारी चीजें दिल्ली में लगाई है। जब तक वो मौसम आएगा जब दिल्ली प्रदूषण से परेशान होती है, उस समय तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बेस्ट एफर्ट कर लें।
2: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पाद डस्ट कलेक्टर के उपयोग की जानकारी दी।
4: ये फियरलेस डस्ट कलेक्टर जो हैं, इनका टेक्नोलॉजी ये एक तरफ से हवा सक करके दूसरी तरफ से क्लीन हवा लगभग 1 घंटे में 3 लाख लीटर हवा को क्लीन करते हैं। अभी इसकी ट्रायल चल रही है। अगर IIT तय करेगा कि मापदंड पे खरा उतरता है और इसके लगने से दिल्ली में हवा में बेहतरी किया जा सकता है, तो फिर इनको पूरी दिल्ली के अंदर कैसे कैसे लगाना उसकी भी एक प्रक्रिया में तय किया जाएगा।
2: प्रदर्शनी में लोगों ने पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण से निपटने के लिए नए विचार प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित हाईटेक केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था से दलालों की भूमिका को खत्म करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और नागरिकों को अनावश्यक देरी से मुक्ति दिलाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार देश की सबसे बेहतर व्यवस्था बनाएगी। इस योजना को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार को भी ऐसे ही रजिस्ट्रार कार्यालय विकसित करने चाहिए जहां लोगों को अर्थपूर्ण सेवाएं मिले और सरकार का राजस्व भी बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन आधुनिक कार्यालयों के लिए पारदर्शी की प्रक्रिया से स्थापित व अनुभवी कंपनियों का चयन किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इससे मौजूदा सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर भीड़ कम होने से सरकारी अधिकारी

0: मुख्य प्रशासनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए कार्यालयों के परिचालन से वहां दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही राजस्व की चोरी, संपत्तियों के गलत मूल्यांकन, लंबे दस्तावेजों की ट्रैकिंग में कठिनाई और फर्जी दस्तावेजों के जोखिम का खतरा खत्म हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुनक नहर पर छठ पर्व को लेकर निर्माण और सौंदर्यकरण कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि छठ महापर्व के दौरान सुविधाओं की कमी से जूझने वाला यह स्थान अब एक स्वच्छ, रोशनी से भरपूर और आधुनिक स्थान में परिवर्तित हो रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए गरिमा, आस्था और सांस्कृतिक सम्मान को दर्शाता है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रास सिंह ने आज बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबगढ़ कॉलोनी में लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट।
2: सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं के विकास पर केंद्रित किया जा रहा है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव और सड़कों पर गड्ढों की समस्या को दूर करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है, साथ ही बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास कार्यों को गति मिल रही है। श्री सिंह ने कहा कि गांव कला, संस्कृति और परंपराओं की एक महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए इनके विकास और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन कवर को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में व्यापक धूल मुक्त सड़क अभियान और विशेष स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। इन अभियानों के तहत शहरी स्वच्छता में सुधार और धूल प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलरों, जेटिंग मशीनों और स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। इसके तहत करोल बाग जोन में निगम द्वारा इस महीने की 15 तारीख से 15 दिवसीय डस्ट फ्री रोड्स अभियान शुरू किया गया है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के कल जारी आदेश में कहा गया है कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अति संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित यह परिसर रक्षा अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि अनुपालन न करने की स्थिति में कानून के अनुसार परिसर को कब्जे में ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
3: 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: 19वां रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने

0: नवनियुक्त युवाओं से आग्रह किया कि वे जन शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के प्रति समर्पित मानसिकता अपनाएं
1: और हिम्मत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें, लोगों की सुविधाएं बढ़ाएं, नई सोच है, नए आइडियाज है, उस बदलाव के साथ जुड़े, अधिकारियों से, सीनियर से लगातार नए नए आइडियाज के साथ चर्चा करें, अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, देश को भी आगे लेके जाए।
0: राजधानी में रोजगार पाने वाले युवाओं ने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए हैं।
2: मेरा चयन जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स में दिल्ली डिवीजन के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी, हमें मोटिवेट किया कि हमें अपना सत्य निष्ठा से कार्य करना है।
3: मेरा सिलेक्शन एनआईटी दिल्ली में तकनीकी सहायक के पद पर हुआ है और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं एनआईटी दिल्ली के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा जो चयन हुआ है भारतीय रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया है और जो मुझे सम्मानित किया गया है आज, वो मुझे बेहद खुशी हो रही है।
5: मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो रेलवे के अंडर हुई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए और आज प्रधानमंत्री मोदी जी से नियुक्ति पत्र पाकर के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इतनी मेहनत जब लास्ट में आकर के सक्सेसफुल होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी में कल सड़कों पर भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और उत्सव का अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा, जो राजधानी के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसी कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,00,000 से अधिक वनवासी समाज के लोग पहली बार अपनी विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेंगे और ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंचेंगे। इस शोभा यात्रा को चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इसके मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज यातायात संबंधित परामर्श जारी किया है। परामर्श में बताया गया कि कल लाल किले पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम और वहां जाने वाली कई शोभा यात्राओं के कारण मध्य और उत्तरी दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकी नाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकी नाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। हालांकि दिन में कड़ी धूप और लू के चलते गर्मी का कहर जारी रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कल का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी की सड़कों पर कल देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य का ऐतिहासिक संगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मुशायरा।

0: फिर बतौर खास सूख कर आंखें पत्थर सी हो जाएंगी, सूख
1: सूख
0: कर
1: कर आंखें
0: आंखें
1: पत्थर
0: पत्थर सी
1: सी
0: हो
1: हो
0: जाएंगी,
1: जाएंगी।
0: इतने आंसू ना इनसे बहाया करो।
1: आहे, बहुत
0: शुक्रिया।
1: अच्छा।
0: सूख कर आंखें पत्थर सी हो जाएंगी, इतने आंसू ना इनसे बहाया करो, सख्त दिल है तो नरमी से जीतो उसे, सख्त दिल है तो नरमी से जीतो उसे, यानी पत्थर से हीरे बनाया
1: वाह
0: करो।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह।
0: सख्त दिल है तो नरमी से जीतो उसे, यानी पत्थर से हीरे बनाया करो, आसमानों में उड़ने की कोशिश में तुम, आसमानों में उड़ने की कोशिश में तुम गिर भी जाओ तो पर फड़फड़ाया करो।
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छा,
1: बहुत
0: बहुत
1: खूब, बहुत
0: शुक्रिया।
1: खूब, बहुत
0: और
1: खूब।
0: क्या जरूरी है कोई बहाना ही हो, क्या जरूरी है कोई बहाना ही हो, बेसबब भी कभी मुस्कुराया करो।
1: क्या बात है,
0: खुश।
1: बहुत खूब, बहुत शार्क का। कुछ और अता कीजिए।
0: और अभी मदर्स डे आ रहा है तो उनके लिए मैंने एक, मतलब सारी माओं के लिए एक गजल कही है, तो आप सुनिएगा
1: हाँ
0: कि
1: जरूर।
0: हम अहले जब्त हैं, हम अहले जब्त हैं, कभी रोया नहीं करते,
1: मेले जब्त हैं कभी रोया नहीं
0: पा
1: करते।
0: लेते हैं जिनको, उन्हें खोया नहीं करते, दिन भर हमें आराम का एक पल नहीं मिलता, उजालों से तो डर लगने लगा है,
1: उजालों से तो
0: तो
1: डर
0: डर
1: लगने
0: लगने
1: लगा
0: लगा है,
1: है।
0: अंधेरा अपना घर लगने लगा है,
1: बहुत खूब।
0: जिधर तन्हाई सी तन्हाइयाँ हो, जिधर तन्हाई
1: तन्हाइयाँ
0: सी
1: सी।
0: तन्हाइयाँ हो, हमारा दिल उधर लगने लगा है।
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह।
0: शुक्रिया। यहाँ से कूच अब करना पड़ेगा, यहाँ से कूच अब करना पड़ेगा, ये गांव अब नगर लगने लगा
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया।
1: बहुत।
0: फिर बतौर खास, किसी ने जिम्मेदारी डाल दी क्या, किसी ने जिम्मेदारी डाल दी क्या, जो ये पौधा शजर लगने लगा है।
1: क्या बात है,
0: बहुत
1: वाह।
0: बहुत शुक्रिया। किसी ने
1: जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी
1: डाल
0: डाल दी
1: दी है
0: क्या,
1: पौधा
0: जो ये पौधा
1: अपने
0: शजर
1: लगने
0: लगने
1: लगा
0: लगा है,
1: है।
0: मुझे वो याद भी आता नहीं अब, मुझे वो याद भी आता नहीं अब, दुआओं में असर लगने लगा है।
1: दुआओं में असर
0: वाह बहुत
1: लगने लगा है। वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह, बहुत
0: कहो
1: खूब।
0: मंजिल से कुछ हट जाए पीछे, कहो मंजिल से कुछ हट जाए पीछे, कि अब अच्छा सफर लगने लगा
1: बहुत
0: है।
1: खूब, बहुत
0: एक
1: खूब।
0: और गजल, किसी से बिछड़ कर संभलने लगे हैं, किसी से बिछड़ कर संभलने लगे हैं, कि अब हम अकेले ही चलने लगे हैं,
1: क्या बात।
0: जो करते थे दुनिया बदलने की बातें, जो करते थे दुनिया बदलने की बातें, जमाने के सांचे में ढलने
1: ढलने
0: लगे हैं।
1: लगे हैं।
0: बहुत
1: वाह वाह।
0: शुक्रिया। गौर फरमाइएगा कि जो जीनत थे घर की, जो थे घर की रौनक,
1: वाह क्या बात
0: जो
1: है।
0: जीनत थे घर
1: घर
0: की,
1: की
0: जो
1: वो
0: थे
1: थी
0: घर
1: घर
0: की
1: की
0: रौनक,
1: रौनक।
0: बुजुर्ग अब वही घर में खलने लगे
1: आए
0: हैं।
1: हाय
0: वाह
1: हाय
0: वाह, बहुत
1: हाय। वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह।
0: जो जीनत थे घर की, जो थे घर की रौनक, बुजुर्ग अब वही घर में खलने लगे हैं, जो कहते थे ये आसमां है तुम्हारा, जो कहते थे ये आसमां है तुम्हारा, वही मेरी शोहरत से जलने लगे
1: क्या
0: हैं।
1: बात है,
0: बहुत
1: वाह क्या
0: शुक्रिया।
1: कहने, क्या कहने।
0: जो कहते थे ये आसमां है तुम्हारा, वही मेरी शोहरत से जलने लगे हैं, कभी जो मुकम्मल नहीं हो सके थे, कभी जो मुकम्मल नहीं हो सके थे, वही ख्वाब आंखों में पलने लगे
1: पलने
0: हैं।
1: लगे। बहुत
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह, क्या
0: शुक्रिया।
1: कहने, क्या कहने,
0: कभी जो
1: बहुत अच्छा।
0: मुकम्मल नहीं हो सके थे, वही ख्वाब आंखों में पलने लगे हैं, सुनो शारिका तुमसे हो ना सकेगी,
1: वाह
0: सुनो
1: वाह,
0: शारिका तुमसे
1: तुमसे
0: हो
1: हो
0: ना
1: ना सके।
0: सकेगी, वफा के उसूल अब बदलने
1: क्या
0: लगे
1: बात
0: हैं।
1: है,
0: वाह
1: उसूल
0: वाह
1: अब
0: वाह
1: बदलने
0: वाह
1: लगे।
0: वाह,
1: वाह
0: बहुत
1: शारदा,
0: बहुत
1: बहुत ही
0: बहुत अच्छा।
1: ताज़ा कलाम आपने सुनाया। और मुझे बहुत ही, मैंने पहली दफ़ा आपका कलाम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सामईन, मैं आपको याद दिला दूं कि हम एक स्टूडियो मुशायरे में हैं, और हमारी जो बाकी शायरात हैं उनके नाम हैं परवीन शगफ, रेशमा जैदी और मैं अज़रा नकवी। आइए अब हम दूसरी शायरा की तरफ चलते हैं, परवीन शगफ साहिबा। आप नसर और नज़्म दोनों में शगफ रखती हैं, तो आपकी शायरी के हम मुंतज़िर हैं, परवीन शगफ साहिबा।
2: आदाब सामई, मैं अज़रा मैम का बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ मधु कर रही हैं। चंद अशआर पेश खिदमत हैं, समाअत फरमाएं।
1: इरशाद, इरशाद।
2: वक्त की शाख पे फिर चांद कहाँ उतरेगा,
1: क्या बात है।
2: वक्त की शाख पे फिर चांद कहाँ उतरेगा, हर घड़ी टूटा सितारा नहीं देखा जाता,
1: क्या बात है,
2: हर घड़ी
1: क्या टूटा
2: टूटा
1: सितारा
2: सितारा नहीं
1: नहीं
2: देखा
1: देखा जाता। बहुत
2: जाता,
1: खूब।
2: और डूबती आंखों में दरिया है या कश्ती कोई,
3: वाह।

0: बिती
1: आंखों में
0: आंखों में दरिया
1: दरिया
0: है
1: है
0: या
1: कि कश्ती
0: कश्ती
1: कोई
0: कोई, ना खुदा मौजे किनारा नहीं देखा जाता, ना
1: वाह
0: खुदा मौजे किनारा नहीं देखा जाता। और शेर समाप्त फरमाया कि
1: वाह
0: दुख के लहजे में दरख्तों ने कहा तूफान से,
1: वाह
0: दुख
1: वाह
0: के लहजे में दरख्तों
1: दरख्तों
0: ने कहा तूफान से, खामशे दश्त खुदारा नहीं देखा जाता, खामशे दश्त खुदारा नहीं देखा जाता। और अब की बारिश ने जलाया है यूं गुलशन मेरा, अब की
1: बारिश
0: बारिश
1: ने
0: ने जलाया
1: जलाया
0: है
1: है।
0: यूं गुलशन मेरा,
1: वाह
0: फसले बारा ये खसारा नहीं देखा जाता। और एक गज़ल से मतला शर्फ समात फरमाए कि आज खामोश हैं शहरे शीशा गरा,
1: आज
0: आज खामोश हैं शहरे शीशा गरा, आईने को मगर बोलने दीजिए,
1: वाह आईने को
0: आईने
1: मालूम
0: को
1: वाह
0: मगर बोलने
1: बोलने दीजिए वाह
0: दीजिए,
1: वाह वाह
0: आज खामोश हैं शहरे
1: शेरे
0: शीशा
1: शीशा
0: गरा,
1: गरा
0: आईने को मगर
1: बोलने
0: बोलने दीजिए।
1: दीजिए।
0: क्या भरोसा चिरागों का, क्या भरोसा चिरागों का शब भर जले, क्या भरोसा चिरागों का शब भर जले, राज जुगनू को भी खोलने दीजिए,
1: वाह वाह
0: राज
1: वाह
0: जुगनू को भी
1: खोलने
0: खोलने दीजिए।
1: दीजिए।
0: और शेर देखिए कि है शिकायत समंदर को खतरों से भी, है
1: वाह
0: शिकायत समंदर को खतरों
1: खतरों
0: से
1: से
0: भी,
1: भी
0: ना खुदा को गुहर तोलने
1: क्या
0: दीजिए,
1: बात है वाह
0: ना
1: वाह
0: खुदा
1: वाह
0: को
1: शाह
0: गुहर
1: परवीन।
0: तोलने दीजिए। और शेर बतौर ख़ास के फिर किसी रोज़ मौसम बदल जाएगा,
1: वाह
0: फिर किसी
1: रोज
0: रोज़
1: मौसम
0: मौसम
1: बदल
0: बदल जाएगा,
1: जाएगा।
0: दिल शजर का भी डोलने दीजिए,
1: वाह
0: दिल
1: शजर
0: शजर
1: का
0: का
1: अभी
0: अभी
1: डोलने
0: डोलने
1: दीजिए।
0: दीजिए। और एक गज़ल से मतला शार समात
1: इरशाद
0: फरमाए
1: इरशाद
0: कि फिर हथेली पे मुझे शमसो कमर देखना है,
1: क्या बात है
0: बात
1: वाह
0: फिर
1: वाह
0: हथेली पे
1: फिर
0: मुझे
1: हथेली पे
0: शमसो कमर
1: मुझे
0: देखना,
1: शमसो
0: शमसो
1: कमर
0: कमर देखना है, आज फिर माँ की दुआओं का
1: का
0: असर
1: असर
0: देखना
1: देखना
0: है,
1: है।
0: क्या
1: वाह
0: कहना,
1: वाह
0: आज फिर माँ की दुआओं का
1: असर
0: असर देखना
1: देखना
0: है, मौसमी गीत सुनाती है हवा हर लम्हा,
1: क्या बात है
0: मौसमी
1: मौसमी
0: गीत सुनाती है हवा हर लम्हा, फिर परिंदों को वही बरगो शजर
1: शजर
0: देखना
1: देखना
0: है।
1: है
0: बहुत
1: वाह
0: ज़्यादा
1: वाह
0: खुश
1: वाह
0: किया
1: बहुत
0: कहने
1: वाह
0: कि
1: वाह
0: फिर
1: वाह
0: परिंदों को वही बरगो शजर देखना है। और शेर बतौर ख़ास समात फरमाए कि आ गले मुझको लगा मैं नहीं कोई गमगीन खबर,
1: आ
0: आ
1: गले
0: गले
1: गले
0: मुझको
1: मुझको
0: लगा
1: लगा
0: मैं नहीं
1: कोई
0: कोई
1: गमगी
0: गमगीन खबर,
1: वाह
0: साथ में रह के तेरे शामों सहर देखना है,
1: वाह वाह वाह
0: साथ में रह के तेरे शामों सहर देखना है। और शेर ये कि इतना मगरूर ना हो रखते सफ़र पर जाना,
1: वाह
0: इतना मगरूर ना हो
1: रखते
0: रखते सफ़र
1: सफर पे
0: पर
1: जाना
0: जाना,
1: है।
0: ख़त्म होती है कहाँ राहे गुज़र देखना है।
1: वाह वाह
0: और हाथ के छाले शगफ रोके यही पूछते हैं, हाथ
1: वाह
0: के छाले शगफ रोके
1: रोके
0: यही
1: यही
0: पूछते
1: पूछते
0: हैं,
1: हैं
0: जाने कब मेहनतों का हमको समर
1: समर
0: देखना
1: देखना है
0: है,
1: वाह वाह
0: जाने
1: वाह वाह
0: कब
1: वाह बहुत
0: मेहनतों का हमको समर
1: शुक्रिया
0: देखना
1: बहुत
0: है। जी बहुत शुक्रिया।
1: बहुत
0: एक गज़ल से देखिए मतलब अशार, नाजुक सी सांस लंबी सी रफ्तार दी गई, नाजुक सी सांस लंबी
1: लंबी
0: सी
1: सी
0: रफ्तार दी गई,
1: रफ्तार
0: छोटी सी एक जिंदगी तू मार दी गई, छोटी सी एक
1: वाह
0: जिंदगी तू
1: तू
0: मार
1: मार
0: दी
1: दी गई।
0: गई। और शेर देखिए कि पतझड़ के बेलिबास शजर का कसूर क्या,
1: वाह वाह वाह
0: पतझड़ के बेलिबास
1: बेलिबास शजर
0: शजर
1: का
0: का
1: कसूर
0: कसूर
1: क्या
0: क्या, लेकिन सजाए जुर्म लगातार दी गई,
1: वाह वाह वाह
0: लेकिन
1: वाह बहुत
0: सजाए
1: अच्छा है बहुत
0: जुर्म
1: अच्छा है
0: लगातार
1: मार
0: दी
1: दी
0: गई।
1: गई।
0: एक शौके रह गुजर ने मेरा हाल वो किया,
1: एक
0: एक शौके
1: शौके
0: रह गुजर
1: गुजर ने
0: ने
1: मेरा
0: मेरा हाल
1: हाल
0: वो
1: वो किया
0: किया,
1: वाह वाह
0: तुरबत के जिस्म से मुझे दस्तार दी गई। शेर देखिए कि कासे में रख लिया मुझे जो कुछ दिया गया, कासे
1: वाह
0: में रख लिया मुझे जो कुछ दिया गया, हैरत है बद दुआ मुझे भर मार दी गई, हैरत

0: थे बददुआ मुझे भर मार दी गई। और शेर ये भी के चाहा था प्यार कस्मे वफा जीने के लिए,
1: जीने के लिए।
0: चाहा था प्यार कस्मे वफा
1: वफा
0: जीने
1: जीने
0: के
1: के
0: लिए,
1: लिए।
0: इन चाहतों में मौत सरे दार दी गई। इन
1: क्या कहने,
0: चाहतों में मौत
1: मौत
0: सरे
1: सरेदार
0: दार
1: दी
0: दी।
1: गई।
0: चाहा था प्यार कस्मे
1: वफा
0: वफा जीने
1: जीने
0: के
1: के
0: लिए,
1: लिए।
0: इन चाहतों में मौत सरे दार दी गई। इन
1: क्या कहने,
0: चाहतों में मौत
1: मौत
0: सरे
1: सरेदार
0: दार
1: दी
0: दी।
1: गई।
0: और शेर ये भी के तितली है बागबां से ये कहती चमन मेरा, तितली है बागबां
1: चमन
0: से
1: से
0: ये
1: ये कहती
0: कहती
1: चमन
0: चमन मेरा,
1: मेरा।
0: फूलों की गोद में भी मगर मार दी गई। फूलों
1: वाह वाह
0: की
1: वाह,
0: गोद में
1: मेरी
0: भी
1: मगर
0: मगर
1: मार
0: मार
1: दी
0: दी
1: गई।
0: गई।
1: वाह।
0: और इसका मख्ता के वीरानियों से निकली जो जंजीर पाशगफ, वीरानियों से निकली जो जंजीर पाशगफ, मंजिल की थी तलब मुझे दीवार दी गई।
1: वाह वाह, बहुत
0: मंजिल
1: खूब,
0: की थी तलब
1: मुझे
0: मुझे
1: दीवार
0: दीवार
1: दी
0: दी
1: गई।
0: गई।
1: बहुत
0: ठीक
1: खूब
0: है,
1: परवीन साहिबा, ये थी परवीन शगफ। और हमारा ये मुशायरा अभी स्टूडियो मुशायरा रवा दवा है। अगली शायरा हैं रेशमा जैदी, मारूफ शायरा हैं, अक्सर आप उनको मुशायरों में भी सुनते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम से हमें मुस्तफीज करें।
2: आदाब सामईन, बग़ैर किसी ताखीर के एक गज़ल से कुछ चंद अशआर।
1: इरशाद।
2: मतला देखिएगा, मैं हूँ खामोश कई दिन से पुकारो मुझको,
1: क्या बात है, वाह
2: हाँ
1: वाह वाह,
2: मैं हूँ खामोश कई
1: कई
2: दिन
1: दिन
2: से
1: से
2: पुकारो
1: पुकारो मुझको।
2: मुझको, आईना घर हो तो एक रोज़ संवारो मुझको।
1: बहुत
2: हाँ,
1: अच्छा,
0: क्या
1: वाह।
0: कहने।
2: मैं हूँ खामोश कई दिन से पुकारो मुझको, आईना घर हो तो एक रोज़ संवारो मुझको। और ये शेर देखेगा, तुम हो गमख्वारे जमाना तो इधर भी देखो, तुम हो गमख्वारे जमाना तो इधर भी देखो, गम की बेनाम सलीबों से उतारो मुझको।
1: क्या बात
0: क्या
1: है भाई,
0: बात,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह।
0: शुक्रिया। तुम हो गमख्वारे जमाना तो इधर भी देखो, गम की बेनाम सलीबों से उतारो
1: उतारो
0: मुझको।
1: वाह, बहुत अच्छा,
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों पे पहरा हुआ,
1: क्या बात है।
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों
1: आंखों
0: पे
1: पे
0: पहरा
1: पहरा
0: हुआ
1: हुआ
0: है,
1: है।
0: कुछ बताओ तो सही अर्श के तारो मुझको,
1: क्या बात है, वाह
0: कुछ
1: वाह,
0: बताओ तो सही अर्श
1: खुश
0: के
1: के
0: तारो
1: तारो
0: मुझको।
1: मुझको।
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों पे पहरा हुआ,
1: क्या बात है।
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों
1: आंखों
0: पे
1: पे
0: पहरा
1: पहरा
0: हुआ
1: हुआ
0: है,
1: है।
0: कुछ बताओ तो सही अर्श के तारो मुझको,
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: कुछ
1: खुश
0: बताओ तो सही अर्श के
1: के
0: तारो
1: तारो
0: मुझको।
1: मुझको।
0: रच जगे हैं मेरी तकदीर की बुनियादों में, रच जगे हैं मेरी तकदीर की
1: की
0: बुनियादों
1: बुनियादों में।
0: में, नींद आती ही नहीं हिजर के मारो मुझको।
1: वाह
0: रच जगे हैं मेरी तकदीर की बुनियादों में, नींद
1: वाह,
0: आती ही नहीं हिजर के मारो
1: मारो
0: मुझको।
1: मुझको, वाह
0: मैं हूँ बीमार हवाए रहे दिलबर ए दोस्त,
1: वाह वाह, बहुत
0: मैं हूँ
1: खूब।
0: बीमार हवाए रहे दिलबर ए दोस्त, उसके कूचे से किसी शाम गुजारो
1: वाह
0: मुझको।
1: वाह वाह,
0: मैं
1: क्या
0: हूँ बीमार हवाए रहे दिलबर ए दोस्त,
1: कहने,
0: उसके कूचे से किसी शाम गुजारो
1: गुजारो मुझको,
0: मुझको।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: और एक गज़ल के कुछ चंद अशआर पेश खिदमत है। मतलब देखिए, किसी मंजिल का असर जानिबे दिल खींचता है,
1: वाह,
0: किसी मंजिल का असर जानिबे दिल खींचता है, एक अनजान सफर जानिबे दिल खींचता
1: खींचता
0: है।
1: है।
0: किसी मंजिल का असर जानिबे दिल खींचता है, एक अनजान सफर जानिबे दिल खींचता है। चांद सूरज ही बताएंगे कभी मेरा वजूद, चांद सूरज ही बताएंगे कभी मेरा
1: मेरा
0: वजूद,
1: वजूद,
0: कौन ये शाम व सहर जानिबे दिल खींचता
1: क्या
0: है।
1: बात,
0: वाह
1: क्या
0: वाह,
1: कहने।
0: चांद सूरज ही बताएंगे कभी मेरा वजूद, कौन ये शाम व सहर जानिबे दिल खींचता है।
1: वाह वाह वाह,
0: कैसी वहशत है जो दीवाना बनाए है मुझे,
1: वाह वाह, क्या
0: कैसी वहशत है जो दीवाना बनाए है मुझे, शाम होते ही ये डर जानिबे दिल खींचता है।
1: बात है, क्या
0: शाम
1: बात है,
0: होते ही ये डर जानिबे दिल खींचता है, बेदयारी मेरी किस्मत में लिखी है लेकिन, बेदयारी मेरी
1: मेरे
0: किस्मत
1: किस्मत
0: में
1: में
0: लिखी
1: लिखी
0: है
1: है
0: लेकिन,
1: लेकिन।
0: बेघरी में कोई घर जानिबे दिल खींचता
1: क्या
0: है,
1: कहने, क्या कहने।
0: बेदघरी में कोई घर जानिबे दिल खींचता है। सरफरोशाने मोहब्बत की कशिश मत पूछो,
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: सरफरोशाने
1: सरफरोशाने
0: मोहब्बत
1: मोहब्बत
0: की
1: की
0: कशिश
1: कशिश
0: मत
1: मत
0: पूछो,
1: पूछो।
0: जेरे

0: शमशीर वो सर जानिब दिल खींचता है,
1: वाह,
0: जिससे ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं मिलना रेशम, जिससे ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं मिलना रेशम, हाय वो शख्स मगर जानिब दिल खींचता है, हाय वो शख्स मगर जानिब दिल खींचता है।
1: बता कीजिए कुछ और।
0: मतलब देखिए, तेरा फिराक तेरा इंतजार एक तरफ, तेरा फिराक तेरा इंतजार एक तरफ, खिजा के बाद उम्मीदें बहार एक तरफ, तेरा फिराक तेरा इंतजार एक तरफ, खजा के बाद उम्मीदें बहार एक तरफ, उलझ रहा है दिमाग इन दिनों, जो हमने अपनी बेटी पे अभी दो तीन दिन पहले कही है, एक नज्म जिसका उनवान है तन्हाइयां।
1: तन्हाइयां जी।
0: तन्हाइयों की रुत में अजब मेरा हाल है, तन्हाइयों की रुत में अजब मेरा हाल है, हर लम्हा मेरे वास्ते दिन माह साल है। तन्हाइयों की रुत में अजब मेरा हाल है, हर लम्हा मेरे वास्ते दिन माह साल है, रौनक दरे हयात की शायद चली गई, रौनक दरे हयात की शायद चली गई, एक अब्र है उदासी का सर पर चढ़ा हुआ, और साये वजूद है जिद पर अड़ा हुआ, ससुराल जब से फूल सी बेटी चली गई, जैसे दरो दीवार की रौनक चली गई, वो उसका हंसना बोलना घर में ही रह गया, जैसे सुकूत कोई समंदर में रह गया, अब हमें और माजी की यादें हैं जा बजा, दिन जागते कटे तो है हर रात जगा, तन्हाइयां नसीब की मीरास बन गईं, हर एक खुशी को छोड़ के ये खास बन गईं, करती हैं बात मुझसे ही परछाइयां मेरी, मुझको बहुत है अजीज ये तन्हाइयां मेरी।
1: वाह, बहुत खूब, ये भी खास एक मौजू है कि माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है और उसको अपने ससुराल भी जाना होता है। बहुत खूबसूरत नज़्म थी।
2: आमीन। अब आपके रूबरू हो रही हैं हमारे सबसे सीनियर माजिज मोहतरमा अज़रा नक़वी साहिबा, आइए उनका कलाम सुनते हैं।
1: बहुत शुक्रिया परवीन। पहले एक तो मुतफर्रिक अशआर
2: जी। इरशाद।
1: हकीकतें तो मेरे रोज़ और शब की साथी हैं, हकीकतें तो मेरे रोज़ और शब की साथी हैं, मैं रोज़ और शब की हकीकत बदलना चाहती हूँ। और इसी गज़ल का एक शेर और सुन लीजिए। पहन के ख्वाब कबा ढूंढ लूंगी चांद नगर, पहन के ख्वाब कबा ढूंढ लूंगी चांद नगर, सहज सहज किसी बादल पे चलना चाहती हूँ, सहज सहज किसी बादल पे चलना चाहती हूँ, कभी तो खुद नगरी की फसील से बाहर, कभी तो खुद नगरी की फसील से बाहर, खुद अपने साथ सफर पर निकलना चाहती हूँ। अशार के बाद मुझे पेश करने दीजिए, ये मेरी जुर्रत है कि गालिब की एक गजल की जमीन में मैंने कुछ सही करने की कोशिश की है, वरना मैं मेरी इतनी भी साथ कहाँ। ये बहुत मुझे बहुत मेरे चचा बचपन में गाया करते थे ये गजल के, गमे दुनिया से जब पाई भी फुर्सत सर उठाने की, पलक का देखना तकरीब उनके याद आने की। अब मैंने इसको एक बिल्कुल अलग रंग दिया है। जमी गालिब की हिम्मत की है खुद को आजमाने की, जमी गालिब की हिम्मत की है खुद को आजमाने की, नहीं उम्मीद कोई गैब से मजमून आने की, और हमारी दस्तरस में है कहाँ गंजी नए मानी, हमारी दस्तरस में है कहाँ गंजी नए मानी, बस एक अदना सी काविश अपना हाले दिल सुनाने की, बस एक अदना सी काविश अपना हाले दिल सुनाने की। और इस शेर पे गौर करो बीबी कि कभी जब कुव्वते परवाज अपनी आजमाते हैं, कभी जब कुव्वते परवाज अपनी आजमाते हैं, इजाजत लेनी पड़ती है हमें अब भी जमाने की, इजाजत लेनी पड़ती है हमें अब भी जमाने की, और रिवायत का गले में तौक, रिवायत का गले में तौक, सर पर ताज कांटों के, रिवायत का गले में तौक, सर पर ताज कांटों के, हम ही पर मुनहसर कर दी गई इज्जत घराने की, हम ही पर मुनहसर कर दी गई इज्जत घराने की। और एक गजल का शेर भी सुन लीजिए इसमें, कि भरम रखा है अपना

0: और उसका उम्र भर कुछ यूं, भरम रखा है अपना और उसका उम्र भर कुछ यूं, कभी कोशिश नहीं की है मोहब्बत आजमाने की। जहां के शोर में गुम हो गई है नगमगी दिल की, मगर आवाज आ जाए है अब भी गुनगुनाने की। मगर आवाज आ जाए है अब भी गुनगुनाने की। और फलक तुमको बुलाता है, जमी हिम्मत बढ़ाती है। फलक तुमको बुलाता है, जमी हिम्मत बढ़ाती है। बदल दो खौफ का मौसम ये सरगोशी हवाने की। बदल दो खौफ का मौसम ये सरगोशी हवाने की। और आखिर में ये शेर देखिए कि ये तानी सी मजामी बांध कर अशार में अजरा, ये तानी सी मजामी बांध कर अशार में अजरा, किए हैं नजर गालिब देखिए शोखी बहाने की। ये तानी सी मजामी बांध कर अशार में अजरा, किए हैं नजर गालिब देखिए शोखी बहाने की। ये एक चिलचिलाती धूप का महीना है और मैं बात कर रही हूँ कोहरे की, जाड़े के कोहरे की।
1: क्या मिजाज है
0: उसके, सोचिए कि ये कैफियत भरी नज़्म है। ये धुंधला कोहर में लिपटा हुआ मौसम, ये धुंधला कोहर में लिपटा हुआ मौसम, सुबह दम मुझको खिड़की से बुलाता है। सुबह दम मुझको खिड़की से बुलाता है, जरा ठहरो मेहरबान कोहर की चादर, अभी छटना नहीं, अभी छटना नहीं है इल्तिजा मेरी, जरा सी देर रुक जाओ, जरा सी देर रुक जाओ, मुझे इस ख्वाब आगी कैफियत को अपने अंदर जज्ब करने दो, मुझे इस ख्वाब आगी कैफियत को अपने अंदर जज्ब करने दो। तखय्युल के परों की सरसराहट सुन रही हूँ मैं, कोई अनजान अनदेखी डगर है मुंतजिर, इस धुंध में लिपटी मुझे आवाज देती है।
2: वाह,
0: कहीं कुछ गुमशुदा लम्हों की सांसें सुन रही हूँ मैं, अभी ठहरो, अभी ठहरो, मुझे कुछ देर आंखें मूंद लेने दो, मुझे कुछ देर और ये सोच लेने दो कि कोहरे में छुपा ये शहर कितना पुरसकून है, खूबसूरत है कि हर घर में कनात राज करती है, कि जैसे मेरी बस्ती में बहुत ही चैन से सब रात सोए थे, मधुर सपनों में खोए थे। सुनो क्या हर्ज है इसमें कि कुछ पल आंख से ओझल रहे वो सब हकीकत सारे मंजर जो मुकद्दर में लिखे हैं मेरी दुनिया के। सुनो क्या हर्ज है इसमें कि कुछ पल आंख से ओझल रहे वो सब हकीकत सारे मंजर जो मुकद्दर में लिखे हैं मेरी दुनिया के। अभी अभी सूरज झलक दिखलाएगा तब सब भरम तो टूट जाना है, अभी सूरज झलक दिखलाएगा तब सब भरम तो टूट जाना है। जरा ठहरो मेहरबान कोहर की चादर, अभी छटना नहीं है इल्तिजा मेरी, जरा सी देर रुक जाओ।
1: क्या कहने,
0: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी नज़्म थी, बहुत अच्छी।
0: आज का हमारा ये स्टूडियो मुशायरा अब इख्तिताम पज़ीर होता है और इसकी शुरका के नाम मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ, शारिका मलिक, परवीन शगफ साहिबा, रेशमा जैदी और मैं अज़रा नकवी। खुदा हाफिज़।
3: सामीन, अभी आप मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी मोहतरमा अज़रा नकवी। तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफ़ी की। मुशायरों की ऐसी ही खूबसूरत महफिल लेकर आपकी खिदमत में हम आइंदा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं फिल्मी संगीत के सफर पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये सबसे पहला बहुत प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, अभी आपने ये जो गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म यंगिस्तान से, आवाज अरिजीत सिंह की। चलते हैं अगले गाने की तरफ। तेरी हंसी में जैसे सुबह की

0: श्रोताओं, ये जो हम गीत सुन रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जमीर से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले जी की।
1: जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो
2: हम भी चले।
0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम समेटने की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी कुछ ही देर में सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर

0: अपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edc.

0: www.sbi.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
4: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक्ट 2025 को इस

0: महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi.

0: कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई। और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तवल्ले ख्याल किया। अमरीकी वजीर खारजा ने आज सपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वजीर आजम मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा, कलीदी, टेक्नोलॉजी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुजाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और क़याम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का यादा किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजरा खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो $20 अरब की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस माहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया, जो तवील मुद्दती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी मुलाजमतें लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और इसमें सहूलत पैदा करने के अहम वसीले के तौर पर काम करती हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना, नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।

0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 mm के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5 लाख गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर-आला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मुफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की ज़रूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील ना होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वज़ीर-आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नज़रिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशोरे के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाही किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लिका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक

وكان تقيا.

فأتت به قومها

ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले

0: छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन शह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो होंग वियात के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to the regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media about that post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, inaugurating the U.S. Embassy support and expanding in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
2: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing. In the 19th edition of the Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Navy Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen, and unnecessary procedural hurdles in property registration services,

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले।
2: लीजिए सुनते हैं फिल्म तीन देवियां से ये गीत।

किशोर कुमार के स्वर में आपने ये गीत सुना, और लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में फिल्म मेरे सनम से ये खूबसूरत गीत।

और लीजिए अब सुनते हैं जब जब फूल खिले ये फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और नंदा के स्वर में ये गीत।

अभी आपने ये गीत सुना, जिस देश में गंगा बहती है, और इस गीत को गाया लता मंगेशकर, गीता दत्त और अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों के सर में। गीत के बोल हैं अंदाज मेरा मस्ताना।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत तुम्हारे, फिल्म संगीत गोल्डन ईरा के। और लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिविली में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी के लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश

ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीज़ा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, और अब 3 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये छूट H-1B वीज़ा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने

कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम का नाम है गीत गजल।

0: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
1: एक तो परदेस जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
0: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
1: छोड़ो।
0: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो। उफ़ो।
1: ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं, जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना, इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
0: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहां की कोई लड़की फिदा हो गई तो
1: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
0: जलन नहीं होगी?
1: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी
0: शोभा।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बरसों बाद यूं घूमने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूसेनियू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथी द्वारा प्रस्तुत गुरु ज्ञान संबंधर की रचना।

ओलिविया, जया चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और नीला राम गोपाल का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अर्चना कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति है पुन्नकुन्नम रामा चंद्रन की, राग बैरागी में।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम में पुन्ना कुन्नम रामचंद्रन की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। सुबह के 4:49 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रातः 5 बजे और 5:55 पर अंग्रेजी में समाचार। 5:10 का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 का समय कार्यक्रम स्वर रंजनी का है। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। चिंतन में आज आप सुनेंगे संत कबीर के विचार। समय 6:40। 6:45 पर आप सुन सकते हैं रामचरितमानस से पाठ भाग बालकांड। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7:00 प्रातः हिंदी समाचार आप सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। श्रोताओं, 7:10 का समय कार्यक्रम संगीतिका का रहेगा और 7:30 पर सुबह आप सुनेंगे गीतों भरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिर से आप सुनेंगे प्रातः 8:00 हिंदी में समाचार समाचार प्रभात में। 8:15 का समय मॉर्निंग न्यूज का रहेगा और 8:30 पर उर्दू खबरें आप सुन सकते हैं। 8:45 पर साहित्य की कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5:00 को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

0: इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। चीन के शांसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुल्यू शेनू में कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुँच गई है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आओ योग करें का। तो आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम आओ योग करें।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्ध ऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।
1: 印度德里广播电台，下面是普通话节目时间。本台每天从国际时间11:45到13:15，向亚洲播送普通话节目，播长是

15597000118400和13605000欢迎各位收听燕都德里广播电台。下面是燕都古典音乐节目。在这次节目里，请听阿南特拉演奏的唢呐。